श्रोताओं नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये विविध भारती है। हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमरीका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

0: संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदनवार।

आज का चिंतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, हम महानता के करीब तब पहुंचते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

श्रोताओ, अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 199। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता में सुनिएगा श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। सुबह और रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। इसी कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। 10 बजे पिटारा में सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां भाग आप सुन सकेंगे। प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। दिन में 11 बजे होगा कार्यक्रम रंग तरंग। 12 बजे सुनिएगा यादों की महफिल।

दिन में 1 बजे सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर, 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी, 2:30 पर होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे, 3 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सखी सहेली।

शाम 4 बजे सेहत नामा कार्यक्रम आप सुन सकेंगी। आज डॉक्टर लीजा बैनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुनेंगे। विषय है थायराइड की बीमारी और उपचार। शाम 5 बजे सुनिएगा छायागीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन।

शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर आप सुनेंगे स्मृतियों के स्वर, अधिशासी लवलेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आज आपको सुनवाएंगे। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक यादों की परछाइयां, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आज इस नाटक का पहला भाग आप सुन सकेंगे। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक और 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत।

10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुने श्री रामचरित मानस का भाग 199।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है, जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस श्रृंखला की कड़ी में जो कर्नाटक रागों के बारे में कुछ रोचक विषयों पर आधारित है, मैं ऐसे दो रागों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी जो मंगलम गाने में प्रायः उपयुक्त होते हैं। ये दो राग हैं सौराष्ट्रम और राग मध्यमावती। मंगलम एक ऐसा बंदिश या कॉम्पोजिशन है जिसे हर महफिल या बैठक के अंत में पेश किया जाता है। शास्त्रानुसार मंगलम गाए या बजाए बिना प्रोग्राम का समापन करना बहुत ही बुरा माना जाता है। मंगलम में प्रायः प्रार्थना होती है कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, और इस मंगलम को पेश करने की विधि ज्यादातर दो होते हैं। एक तो हुआ राग सौराष्ट्रम में त्यागराजा द्वारा रचित मंगलम कीर्तना गाने का, जिसके शब्द हैं पवमान सुतुडु बट्टु पादार विंद मुलकु नी नाम रूप मुलकु नित्य जय मंगलम। और दूसरी प्रथा है राग मध्यमावती का छोटा सा नमूना गाकर या बजाकर समाप्त करने का। कभी कभी तो दोनों ही करते हैं, अर्थात सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु बट्टु गाकर उसी के साथ अंत में एक छोटा सा टुकड़ा राग मध्यमावती में भी जोड़ देते हैं। अब आप सवाल करेंगे, ऐसा क्यों? राग सौराष्ट्रम और मध्यमावती को अंत में क्यों गाया जाता है और उन्हें मंगल राग क्यों माना जाता है? कारण जी ऐसा दिया जाता है कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती में स्वर जो लगते हैं, स्वर समूह इस तरह के हैं जिनसे मंगलमय माहौल उत्पन्न होता है और शांति होती है। अगर महफिल के दौरान कुछ ऐसे राग पेश किए गए हैं जिन्हें विवादी राग कहते हैं, यानी कि जिनके स्वर समूह अलग प्रकार के हों, तो उन रागों से उत्पन्न होने वाले चंचल और कम शांति वाले रस या सेंटिमेंट्स को मिटाकर शांति के साथ प्रोग्राम समापन करने के लिए मंगलम गाते हैं, ताकि श्रोतागण अपने कानों में इस मंगल रागों की गूंज के साथ घर लौटें। राग सौराष्ट्रम को कभी कभी प्रोग्राम के पहले आइटम में भी पेश करते हैं, लेकिन पवमान इस कीर्तन को शुरू में कभी भी नहीं गाया बजाया जाता है। पवमान के बाद उठ जाना चाहिए, और अगर पवमान गाने के लिए समय न हो तो कम से कम दो चार टुकड़े राग मध्यमावती में पेश कर दें और फिर खत्म कर लेते हैं। आज राग सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु मंगलम सुनाने से पहले मैं यह बता दूं कि राग सौराष्ट्रम

महाराष्ट्रम, 17वां मेलकर्ता सूर्यकांतम का जन्य राग है और हिंदुस्तानी पद्धति के आनंद भैरव से थोड़ा कुछ मिलता जुलता है। स्वर जो लगते हैं वे हैं कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद, अर्थात पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में बिलावल के स्वर लगते हैं। चलन इस प्रकार है, सुनाती हूँ।

ये हुआ राग सौराष्ट्रम, जिसमें ज्यादातर मंगलम गाते हैं। राग मध्यमावती औडव राग है, जिसे हिंदुस्तानी पद्धति में मध्माद सारंग कहते हैं। इसमें लगने वाले स्वर इस प्रकार हैं: शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम और कोमल निषाद, यानी कि गांधार और धैवत वर्ज्य हैं, जैसे कि मध्माद सारंग में भी वर्ज्य हैं। मध्यमावती का चलन इस प्रकार है, सुनिए।

ये था एमएस सुब्बलक्ष्मी केसवर में राग मध्यमावती। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती।

0: अभी आप सुन रहे थे एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावधि। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत पद्धति के ऐसे रागों की चर्चा जिनसे जुड़ी हैं कुछ पुरानी मान्यताएं। आप तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी शकुंतला नरसिम्हन। कार्यक्रम को जारी रखते हुए शकुंतला नरसिम्हन कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा करेंगी कल से।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

फिल्म सती सावित्री का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर मन्ना डे के युगल स्वरों में भरत व्यास का लिखा यह गीत था। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में से गए लता मंगेशकर ने राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। विविध भारती से श्रोता इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: स्नान में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेती अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राजस्वबाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रख रखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।

0: समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _ उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी फ्लड पीएससी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
3: जैसा कि पिछले दिनों में गर्मी का असर है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बनेगा। उसके बाद जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 28 तारीख से थोड़ा सा जो तराई बेल्ट है सेंट्रल पार्ट में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, तो कहीं ना कहीं अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृहमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने

पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमरीकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर

0: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मोज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मोज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मोज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है,
2: नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union and Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, शीतल हवाओं की ताजगी लिए आपके रेडियो सेट पर शुरू हो चुका है कार्यक्रम चित्रलोक। गीतों की सुरीली तान और सुबह की चहल पहल, सब कुछ हर रोज एक नया रंग भरता है हमारे जीवन में। कुछ ऐसे ही गीतों को हम लेकर आए हैं आज आपके लिए चित्रलोक कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का प्रोग्राम चित्रलोक में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तर्जर आवाज थी अमित त्रिवेदी की। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी केदारनाथ। श्रोताओ, आज विश्व फुटबॉल दिवस है, जो फुटबॉल को लेकर संगठन और इस खेल से जुड़े लाभ के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर मनाया जाता है, जो संस्कृतियों और समुदायों के बीच एक कड़ी का काम करता है। शांति और सामाजिक समावेश की भावना हो सभी वर्ग, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी इस खेल में समानता हो, ऐसी बातों पर जोर देता है आज का ये विशेष दिन।

पकड़ के रस्सी जल जाएगी, पकड़ने इसकी आग है। यो ऊंची टेप से ना पैगी, मेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें टक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, सामने चारों खाने चटक।

जात बड़ी छोरी जबर जात बड़ी पापा इसने छुटे का जो पीता मेरे गीता बनी छीता इससे पहले के पपीता मेरे झाड़ से धाड़ से पछाड़ गई जो भी था उखाड़ना उखाड़ गई जितने टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक।

रफ्तार की आवाज थी दंगल फिल्म का यह गीत आपने सुना, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा, प्रीतम का संगीत था।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिर एक बार इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

शिवम पाठक की आवाज में आप सुन रहे थे पद्मावत फिल्म का ये गीत। एएम तुरस की बोल थी, संजय लीला भंसाली की तर्ज थी। श्रोताओ, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस की आज जन्म जयंती है। आज ही के दिन सन 1886 में बंगाल प्रेसिडेंसी के बर्दवान में सुबलदाह नामक गांव में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। उस समय ब्रिटिश भारत में देशवासियों की तकलीफें, क्रांतिकारी आंदोलन, जब तक पड़ते अकाल और संकटों से जूझते दौर ने रास बिहारी बोस पर कुछ ऐसा असर डाला कि बड़े होते होते वो क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकर्षित होते गए। चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद देश सेवा से पूरी तरह से जुड़ गए। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को उजागर करना, देशवासियों को परतंत्रता से आजाद होने के लिए प्रेरित करना, संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करना इत्यादि के लिए वो हमेशा सक्रिय रहे और लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। इस सिलसिले में देश विदेश का दौरा भी उन्होंने किया। 1912 में अनुशीलन समिति में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया।

0: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर विद्रोह में सक्रिय रहे राजबिहारी बोस ब्रिटिश सैनिकों के हाथ न आए और अंतर और राष्ट्रीय क्रांति को संचालन करते रहे, इसलिए राजबिहारी बोस जापान चले गए। 1 सितंबर 1942 को राजबिहारी बोस की भारतीय राष्ट्रीय लीग की सैन्य शाखा के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। आजाद हिंद आंदोलन के ध्वज का चयन भी उन्होंने किया और आजाद हिंद सेना की सत्ता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। राजबिहारी बोस को जापान सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के प्रति सेवा में समर्पित कर दिया। राजबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना भी की। वो युगांतर से भी जुड़े रहे और आजीवन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। उनकी जीवन संगिनी का नाम था तोशिको बोस। आगे चलकर तपेदिक की बीमारी से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया, जिससे वो उबर न पाए और 21 जनवरी 1945 को इस आसार संसार को त्याग कर अनंत पथ पर चले गए। हम महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राजबिहारी बोस को नमन करते हैं।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए।

पे छेड़ो, झंझनाओ बार।

0: बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
1: भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
0: है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

बाजीराव मस्तानी इस फिल्म में आपने सुना श्रेया घोषाल और वैशाली मादे की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे, जैकी वंजारी का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, खाई शाम रोक लई और चख मुख चूम

0: फिल्म देवदास का ये गीत था। गीत और संगीत थे पंडित बिरजू महाराज के। पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्ण मूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, भारतीय सिने जगत के जाने माने अभिनेता और फिल्मकार सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। इनका असल नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। फिल्म जगत के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे शख्सियत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लगभग 5 दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। 1955 में अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में ही उन्होंने एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों में काम किया। एक ही रास्ता, मदर इंडिया, सुजाता, गुमराह, वक्त, हीरा, खानदान, मेरा साया, हमराज, मिलन, छाया, गबन, जाग उठा इंसान, आम्रपाली, पड़ोसन, रेशमा और शेरा, ऐसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में सुनील दत्त ने दी। 1995 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सुनील दत्त ने अभिनेत्री साधना, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयंती माला, नूतन और नरगिस जैसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ बेहद सफल फिल्में की। बाद के दशकों में वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस उनकी शरीके हयात थी। नम्रता दत्त, प्रिया दत्त उनकी बेटियां हैं और सुप्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त उनके बेटे हैं। आज ही के दिन 25 मई सन 2005 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। तमाम पुरस्कार तो उन्होंने अपने नाम किए ही। 1968 में अभिनेता सुनील दत्त को पद्मश्री और 2005 में मरणोपरांत फाल्के रत्न पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी कमाल खान की, रजत अरोरा के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। श्रोताओ, आज सिनेमा जगत के यानी भारतीय सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर था। इनकी मुलाकात संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई और दोनों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में सिनेमा जगत को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिनका संगीत आज भी उतना ही मशहूर है।

रतन धन पायो। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल हैं। हिमेश रेशमिया का संगीत है।

तो ये था कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं इजाजत आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: स्पीति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना

0: ही गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के हुस्नलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में

छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहाँ रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देख

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो,

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम्, एक जय घोष। वंदे मातरम् एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम् एक जय घोष।

सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा

0: 84 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993 फिल्म

0: प्रोड्यूसर, उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड वन।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जाम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: के फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाई रमेश तलवार, म्यूजिक बाई कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना, वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड टू में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजर रही है आंख से, तो मैं काफी चमागे चाहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर है। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो

0: फिर बीआर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
1: यस,
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में पिक्चर
1: बन जाता था।
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी हुई?

0: खाना और एक आना वापस आना। अठन्नी में पिक्चर
1: काम बन जाता था।
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग। सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्वाइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई। अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 वर्ष रखकर कोने में बैठा। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
1: जी जी।
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है, ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी हिट हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार
0: का अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: बताओ। मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ।
0: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: सलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, एज राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से

0: चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है। अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूं जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
1: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
0: खूबसूरत।
1: पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी, और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, प्ले सब बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
0: जी जी,
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंटम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
0: जी जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी,
1: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूंगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती है, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं बोलूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उस जगह मैं कर लेता हूँ। फिर भट्ट के साथ हम वहां गए, वहां उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत

0: फेमस टूरिज्म डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी एनएफडीसी के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम न्यू कमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तो कौन सा प्ले करना चाहते हो। उसने प्ले का नाम बताया ये वाला ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है किसको करती है। जिया जी को करती है। और कौन है
1: जी
0: जो इसमें ठीक रहेगा। पहले जिया जी के पास पूछते हैं अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों उनकी कंपनी का एबीसी सेल के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी बहुत इज्जत करती थी मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ। मैंने सब्जेक्ट सुना सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझे कहा ऑलमोस्ट हाँ है फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल अमित जी को बुलाऊंगा बच्चों को बुलाऊंगा सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती है मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का टूर का। बोले ठीक है रिश्ते हुई हमने शो रखा भाईदास में प्राइवेट शो जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए सब सबने हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई सबने देखा लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
1: अरे वाह
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। ये आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे बहुत अच्छा करेंगे आप करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले तो मेरे दर्शन करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है आप एकदम रिलीफ है प्ले में आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है क्योंकि वो जया जी थ्रो आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता समय 3-4 तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूं लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर हम गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली, क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ, वो प्ले भी

बेटुआ अच्छा चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहां जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोएट्री के ऊपर उनकी कहानी लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूंगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूंगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूंगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्ट फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और को, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्का में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि

0: 14-15 साल का है और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है। तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी। वो बन गया, जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शंस करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई परीक्षित थाने के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थाने से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो टाइम अलग था अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी का भार करता।
1: मैंने दिखाई क्यूट प्ले है।
0: हाँ बहुत अच्छा, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।
2: मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चुअल स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जायदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेकर लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बस। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूं, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका क्या, वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।
2: अच्छा।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जानी माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज उजाले।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो

0: जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम का यह पहला गीत, जो कि है एक भक्ति गीत। इसे लिया गया है हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से। चित्रा सिंह की आवाज है, रायदास ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है।

कभी किसी की तारीफ की है? कर लीजिए। अगर तारीफ किसी शहर से हो तो कुछ ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में हम तो हैं परदेश में, यह गजल राही मासूम रजा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है।

हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स। इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, द खजाना कॉन्सर्ट, पीनाज मशानी की आवाज में मधुरानी के संगीत के साथ।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी। इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

एल्बम से सोनाली जलोटा की आवाज में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार,
2: आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मन तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।

0: होली महाराष्ट्र से साजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण है।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
3: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
2: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
3: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया, वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।

0: हां, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
1: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्धशीर बुड़जोड़ जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुड़जोड़ जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे।

0: चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार।

0: हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि है अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा वॉडवाल की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ, और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती हैं कुछ बातें, कुछ जज्बात, और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है पड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा

के झोंकों से अपनी इज़राहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से नौ तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो, आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं, सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी भागती जरूर है लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शो नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है, ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर। और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है, लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको दो प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा, बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं, आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर। और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो हमारी श्रोताओं ने बहुत अच्छे उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार है संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और

व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत। लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को और हमने आपसे पूछा कि आपके पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज हम आपके गीत भजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है। आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए और उन्होंने लिखा कि अब वह सुनने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल, तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बहार आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा, ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है? और बहुत खूबसूरत सा गीत है और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।

हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने उस अपने उन गुरु का नाम भी लिया है, तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज कौन सी है, अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज को पहचान लें तो हमें जरूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार है वो शैलेंद्र सिंह है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है। तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे

श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को किसी भी मौसम में चैन नहीं है, गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो देखिए असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो है वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है, विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं, खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है, फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि चुप गए सारे नजारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं, और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है, आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो है वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है, जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है, और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार, और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारस मणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में

0: सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़े इस धारा के साथ।
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466।

0: श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीली गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारी एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 पर जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूं, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं तो बता दीजिए कि इस ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं, तो हमारे श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफी ने ज्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, जरूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई, 89 भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सबका ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए, और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े के मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठकर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनके

दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की

चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामलां मातरम् वंदे मातरम्
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में

0: समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिविंग रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज

0: नगर मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4थे स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

सबका भाग बनाता था, तू सबका।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलमारा फिल्म का यह गीत आशा भोसले की आवाज में। शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ ऐसी चंद तपन दिग्नादि राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

दुनिया लहकी मृदंग ठनका झक झक झक झक नागिन तेज तेज सगन नदा दा किट झक झक झक सगन झक झक सगन का सगन का किट झक झक सगन का सगन नदा साधा झक सगन का साधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ ही अपने घर साथ ही अपने घर साथ ही अपने घर।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

0: की सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है, खेलते रहना है, उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस खेलते जाना है।
1: जी
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है, जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है।
1: जी।
2: और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल,
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की, जो कहानी है बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ, फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल। वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: जी बिल्कुल, आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है। तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जो
2: एक बिल्कुल गीत भी होते हैं, लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित, कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का

सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, रात भर उसे नींद न आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी

देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा

0: हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ई का हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी
3: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
4: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए, तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। अरे बहू, बहू ये क्या कर डाला है?
1: अब इबका हुई अम्मा जी। हाँ, कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
4: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
5: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहुत से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
4: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
5: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिसरानी, ये हुआ कब?
3: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
5: 7 बजे सुबह।
0: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
5: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
4: तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
5: रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
4: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
5: क्या जाए? हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने

0: की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस हरे कृष्णा
1: हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
0: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
3: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा।
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप रे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हा?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
1: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
3: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
0: रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
2: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला।
2: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूँ भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है।
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
2: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
2: ऐसा।
0: हरे कृष्ण।
4: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के तोन तो देखो।
0: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
5: अरे अम्मा जी,

0: हाँ।
1: अरे तो
0: क्या हुआ, बोलो तो।
2: अरे हुआ का,
1: अरे
2: बता
1: का बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
3: क्या, बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गए।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। हाँ। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे। अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
0: जी।
1: तो इसमें

0: ग्यारह ग्यारह खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: और ये जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
0: बिल्कुल
1: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
0: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
1: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती, देखिए खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है,
1: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है,
0: वो
1: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं, और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है
0: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहां से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
1: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले जाते थे।
0: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
0: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं क्योंकि आपको जब सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
1: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
0: वाह, बहुत बढ़िया बात।
1: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ।
0: जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है।
1: हाँ,
0: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
1: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है।
1: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिये बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी, और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
0: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं। एक जब हम बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा।
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती है। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यहाँ घूमने जाना है।
1: ठीक है, तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
1: अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशबू हमारे तक आ जाती है।
1: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयां ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती है उनके लिए जो दवाइयां रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
0: लेके चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
1: क्या?
0: वो होता है टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम,
0: सबसे पहला काम, अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन दो महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो दो महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे चार लोग जा रहे हैं तो चार पेज बन जाते हैं। हाँ। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके

0: प्यार के साथ सफर पर निकलना न केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी
1: चाहिए। बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये दो चीजें
1: जरूर
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखे होने, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कन्फर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ओआरएस की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हो तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, टकोर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सपरिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतया जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: जी
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहां तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरी परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे, और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा

0: ना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
1: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
0: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
1: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है और इसे तलना होता है। तो घी, जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
0: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो है और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
1: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
0: बहुत अच्छा लगेगा।
1: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग,
0: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
1: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत
1: जी।
2: वो हम

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा एक जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: विधि,
2: विक्ट्री विधि। सो वो कहती है कि क्या क्यों कहूं, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूं, हंस रही हूं चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है,
1: बहुत अच्छी
2: तैयारी
1: बात
2: करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए,
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। कथा अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होता है ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी,
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर

0: है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है
1: जी।
0: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
1: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
0: नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
1: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में, सुनते हैं।

0: जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
1: सप्लीमेंट्स,
0: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहां पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं, और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते हैं।
0: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है, कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड, पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब

0: विलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
1: अच्छा,
0: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
1: अच्छा,
0: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको। पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
1: अच्छा,
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गया, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहां पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया,
0: पॉजिटिव
1: जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
0: हाँ, रेंज के बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी, जी जी।
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि, हाँ, ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन एंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली रूट, जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
0: जी
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है।
0: जी
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो
0: चिकित्सा
1: चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो,
0: हो जाती है।
1: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे, अगले गाने के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब

0: माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है, तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
1: जी,
0: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस।
1: वो कैसे?
0: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
1: जी,
0: मेंटल में कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, पड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
1: जी जी।
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
1: जी जी।
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
1: जी।
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
1: फोबिया,
0: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारू या चिल्लाऊ, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है।
0: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
1: जी।
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल,
0: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना,
1: वो सारी विषैली चीजें,
0: हाँ,
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
0: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले
1: जी।
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का।
0: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां

0: जो प्यूबर्टी में जाती है उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए या दूसरों

0: कभी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
1: सही बात,
0: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म में स्वेटिंग मतलब
1: पसीना
0: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
1: लक्षण देख के।
0: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
1: एक इंडिकेशन होता है,
0: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
1: आयोडीन मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
0: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
1: क्या बात है,
0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
1: मायूस सा
0: बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है, हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है, और वो जब भी पूछते हैं तो थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में।
0: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है
1: जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पोर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए, इससे जब ज्यादा पानी पियोगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत

0: प्रेशर पड़ेगा।
1: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
0: ओहो
1: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
0: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
1: उतना ही।
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो चाइनीज फूड में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है,
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
1: हाँ, कम कर दीजिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल
1: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
1: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं हूँ।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया जुबरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र

0: मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृहमंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Shrimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
0: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहां पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहां पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहां पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वॉयलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वॉयलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज ऑल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर, हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है।

0: आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता है।
1: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वे ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलॉन्ग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
2: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग
0: 67 वर्षीय कोटक आपने

0: व्यापार एवं उद्योग।
1: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल
0: पार्टनरशिप। कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
1: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
0: Ramaswamy Palliswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
1: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
0: guidelines.
2: श्री
0: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
1: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती है।
2: श्री पांडे वॉज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया।
0: पद्मश्री श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
1: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्व बंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
0: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
1: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वॉज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
0: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
1: Jaisalmer ke Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
0: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
1: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
0: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर साहित्य एवं शिक्षा।
1: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities.

0: He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri Kumar Bose, Kala Tabla.
2: Kumar Bose, Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है. आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे.
0: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
1: Shri Janardan Bapurao Bothe, समाज सेवा.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं.
0: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री तुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई. He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है. राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है. 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं.
0: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
2: Dr. Ramchand Godbole aur unke saath Sunita Godbole, aap ek
1: Dr. Ramchand Godbole.
2: 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा.
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहां पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय

0: श्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोविंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report
2: on the security. Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: V.C.
1: Roy
2: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं। इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज।
2: मीर हाजी कासम कला ढोलक।
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
2: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। ही लेड अपील्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लीवरेज्ड सॉलेस एंड सॉलिडैरिटी फॉर artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant Kala Kurumba Tribal Painting, unki patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन कितना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथ्रो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार अपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनी

0: 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the Academic Bank of Credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Rabbari is 23-year khiladi ki T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार.
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड. एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल.
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा.
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%. एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी.
1: देववा लाड, दादा लाड, कृषि.
2: देवालाल किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं.
0: श्रीरंग देवालाल इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल.
1: श्री अंके गौड़ा एन, समाज सेवा.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69-year-old Dr. Mandal, interventional cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में.
0: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खासतौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है.
0: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने.
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी.
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा.

0: Shrimati Mukherjee is the recipient of numerous awards such as the National Award Certificate in 2010 and Shilp Guru Award in 2016 by the Ministry of Textiles, Government of India. She's also been acknowledged by the Government of West Bengal by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय.
1: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग.
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से.
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: Shri K. Pajanivel Khel Silambam.
2: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है. इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल.
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं. आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत. मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है.
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s. As secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti, he revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है.
0: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान.
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार.
2: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार. गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए. प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप.
0: ओवर अ करियर स्पैनिंग 6 decades, श्री प्रसाद प्रेजेंटेड मोर देन 6,000 कॉन्सर्ट्स अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली.
1: प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चिकित्सा ट्यूबरकुलोसिस.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है.
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर. He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है.
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000

0: 1,000 advanced endoscopic procedures. He has also
1: Srimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, एंड हैज रिसीव प्रेस्टिजियस अवार्ड लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: वेल, डॉक्टर रेड्डी हैज डिलीवर्ड ओवर 921 CME लेक्चर्स, ऑफर्ड 112 प्लस पब्लिकेशंस एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूमरस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज टू ब्रिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इंडियन प्रैक्टिशनर्स।
1: श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नित्य।
2: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
0: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
2: 86 साल के शास्त्री जी,
1: साहित्य एवं शिक्षा
2: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
2: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाज मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी।
1: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 PhD एंड 5 MSc स्टूडेंट्स, मेकिंग सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।

0: बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: Sridhar ji, Akashwani ke up mahanidheshak rahe aur vidyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
2: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा।
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृहमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: डॉक्टर सुशील अम्मा हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एक्सटेंसिव रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस कर्नाटका इंक्लूडिंग एडल्ट लिटरेसी कैंपेन्स फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड महिला मंडल्स एंड वोकेशनल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग माइक्रो क्रेडिट इनिशिएटिव्स एंड पंचायत लीडरशिप डेवलपमेंट। शी हैज ऑल्सो वर्क्ड क्लोजली विद ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स।
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय

0: के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए उनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य, कला थिएटर,
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
1: श्री वैद्य
0: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hai. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar photovoltaics kshetron mein bahut karya kiya hai.
1: Professor Vasi, throughout his career in both semiconductors and solar photovoltaics, he stressed the importance of interdisciplinary, collaborative and inclusive research, which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: डॉक्टर व्यास वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी, डोमेन एक्सपर्ट मेंबर इन नेशनल स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी। He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley Var, Samaj Seva.
0: Ab bari Halley Var ji ki, aap paryavaranvid aur khasi logon ke swadeshi gyan ke liye ek pratishthit naam hai.
1: Shri Ward has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहनन का हमरदीप भैया की नमस्कार। भैया आरो देखो गर्मी बहुत बढ़ रही है, अपन का अपने स्वास्थ्य की देखभाल तो करते ही रहने, संगे संगे खेती बाड़ी के जो काम है भी अपन का समय से निपटाऊत रहने, काय के समय भी इंतजार नहीं करत और जो जरूरी काम है वे भी इंतजार नहीं करत। और अपन का एक बात और बता दें, जो किसान भैया बागवानी को काम करत यानी बाग बगीचा लगाएं, पेड़ पौधा लगाएं, तो ऐसी बढ़त हुई गर्मी में उन पेड़ पौधन को भी ध्यान रखने, अपने बगीचन की खास देखभाल अपन खा करने, जो नहीं भैया के दिन भर अपन खा वो काम में लगो रहने, काय के दिन में बहुत तेज गर्मी हो जात, गर्म हवा चलन लगत, तो अपन खा सुबह शाम अपने बगीचन की देखभाल करने। और अपन खा एक बात बता दें कि खेती बाड़ी में क्यों ऐसे काम जो है वो समय से अपन का करने, अगर देरी अपन ने कर दी तो अपन खाओ को नुकसान आगे जो आवे बाव समय है उनमें देख भी मिलत। तो अपन जो भी काम करें या आगे जो काम आ रहा उनकी तैयारी और योजना अपन का पहला से बना लेने। अबे आगे जैसे अबे जायद को मौसम चल रहा और आगे खरीफ को मौसम आऊने, तो उनके लाने भी अपन का तैयारी पहला से करने। बात कर रहे थे बागवानी की, तो अपने जो बाग बगीचा है उनमें जो भी पेड़ पौधा लगे, अगर कोनो पेड़ पौधन की कटिंग होने तो कटिंग अपन का समय से कर देने। और ई गर्मी में जो अबे अपन देख रहे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, तो अपने पेड़ पौधन का पानी की सोई जरूरत पड़त, तो अपन खा शाम के समय या बड़े सुबह सिंचाई को काम करने। और इसे कहूत के शाम सुबह जो अपन पानी अपने पेड़न में लगाऊत उको ज्यादातर भाग जमीन में चलो जात, पेड़ पौधन के उपयोग में आ जात और ऊपर नहीं उड़त, यानी बाष्प बन के वो पानी नहीं उड़त। अगर जई सिंचाई अपन ने दिन में करी तो तेज धूप और तेज गर्म अपनी धरती हो जाती, इसे अपने पानी को ज्यादातर हिस्सा बाष्प बन के उड़ जाती, इसे पानी को नुकसान भी होत, समय ज्यादा लगत और अपने पेड़न का फायदा भी कम पड़त। तो अपन खा शाम और सुबह के समय सिंचाई को काम करने। और सिंचाई की और भी विधियां हैं, जैसे अपन सीधा पानी न लगा के कछु किसान भैया बराव बनाए तो वो माध्यम से देत, और अगर अपन का नई विधि अपनाऊने तो इनमें टपक सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन को अपन सहयोग ले सकत, इसे पानी की बचत है, समय की बचत है और मेहनत भी कम लगत, सिंचाई भी बढ़िया हो जात। और अब गर्मी में बगीचन में एक बात को और ध्यान रखने के, जो नमी है वह पर्याप्त अपने पेड़ पौधन के आसपास बनी रहे, इसके लाने अपन मल्चिंग कर सकत। मल्चिंग यानी पेड़ पौधन के आसपास जो जमीन है उसमें छाया अपन बना दे, में वह छाया अपने घास फूस की हो सकत या जो पेड़ पौधन की पत्तियां हैं भी आसपास डाल दे में, तो सिंचाई जब अपन करत ऊपर से छाया बनी रहत तो पानी नहीं उड़त और देर में सूखत। तो अपन मल्चिंग जरूर करें। और इस समय पर देखो अपने पेड़ पौधा वृद्धि कम करत, तो रासायनिक जो खाद है उनको प्रयोग अपन का कम करने, काय के पौधा गर्मी के कारण वृद्धि नहीं कर पाऊ, तो नई शाखाएं उनकी नहीं होती, नई पत्तियां निकलती। तो अपन का बता दें जो रासायनिक खाद है उनको प्रयोग अपन का कम करने, इससे पैसा की बचत होगे। और संगे संगे अगर अपनो देसी खाद है तो उको प्रयोग अपन कर सकत, जैसे गोबर खाद है या कंपोस्ट खाद है या केंचुआ खाद अपने पास है, तो निदाई गुड़ाई करती बेरा जब भी अपन पेड़न के आसपास गुड़ाई को काम करें तो नमी होए माटी में उस समय अपन का मिला देने, सूखी माटी में अपन का जैविक खाद या कंपोस्ट कोनो खाद को प्रयोग कर रहे तो सूखी माटी में नहीं करने। इसे सूखी माटी में अगर अपन ने जैविक खाद मिला दो तो काहुत भैया के जो में जीवांश कार्बन है या जो पोषक तत्व है वे सूखी जमीन में उतने काम नहीं करत जो नमी में मिलके और अपने पौधा के आसपास माटी में पोषक तत्व बहुत ज्यादा बढ़ा देत। तो जब भी ऐसे हरी खादन को प्रयोग करें तो देख ले पेड़ पौधन के आसपास या खेत में कर रहे तो खेत में नमी हो वो बहुत जरूरी है। और कटिंग की बात करें, देखभाली में एक कटिंग की भी बहुत अच्छी भूमिका हो बगीचन की, तो बगीचन की लाने जो अपने जो पेड़ पौधा है और उनमें अगर मुरझाई शाखाएं अपन खा देख रही, मुरझाए फूलन बाई शाखा देख रही या कोनो पेड़ पौधा अपन खा ऐसा लग रहा हो कि कटिंग हुए चज्जे शाखाएं होते होते ज्यादा फैल गई, तो अपन खा कटाई जरूर कर देने। इसे कहो तो आगे आवे बाई समय में बढ़िया अपना जो पौधा है पेड़ है वो हरो भरो हो जाए, नई पत्तियां बढ़िया निकले और फल

0: भी अच्छे लगें। धूप तेज पड़ रही भैया तो अपन का का करने के जो छोटे पेड़ पौधा है या पौधन की नर्सरी अपन ने लगाई तो उनकी सुरक्षा के लाने अपन का छाया की व्यवस्था करने या तो शेड अगर अपने पास है तो शेड के अंदर उन पौधन का रख देने, क्या है कि तेज गर्मी में भी सूख सकत, खराब हो सकत। और एक और बचाव को तरीका है कि अपन तिरपाल या नेट की व्यवस्था है तो उसे अपन छाया बना देवे, इसे अपने पेड़ पौधा बढ़िया छाया में सुरक्षित बने रहे और जब भी अपन पौधरोपण को काम करें तो अपने जो पौधा है बढ़िया बढ़वार करें और अच्छी पौधरोपण हुए। तो इन बातों को अपन का ध्यान रखने और नए बगीचा जो है उनमें सिंचाई की व्यवस्था, संगे संगे उर्वरक खाद की व्यवस्था, निदाई गुड़ाई की व्यवस्था और मल्चिंग को काम समय से अपन का करत रहने। और भैया हरो बतकाओ अपन से और करें, लेकिन तनक रोकत है और सुनत है संदेश।
1: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
2: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
3: अरे सच में भैया?
2: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
0: हाँ भैया हरो, अब अपन सुनो जो संदेश। और देखो भैया हरो, अपने किसान भैया कछु ऐसे हैं जो गर्मी के मौसम में जायद की फसलें लगाएं। जायद की फसलन में कछु किसान भैया उर्द मूंग की खेती कर रहे, कछु तरबूज खरबूज की खेती कर रहे और कछु किसान भैया ऐसे हैं जो साग भाजी को काम कर रहे। खास तौर से जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनमें कई तरह की समस्याएं आती, बेल वाली सब्जियों में कई तरह की कीट लग जात, रोग लग जात। तो ऐसी समस्याएं के लाने अपन खा अपने फसलन की निगरानी करत रहने, देखभाल करत रहने। और देखो समय समय पे कार्यक्रम के माध्यम से सोई अपन खाए ऐसी जानकारी सुनवाऊत रत, अपन तक पहुंचाऊत रत। और आज अपन के लाने एक भेंटवार्ता लेके आए कद्दू वर्गीय फसलों में कीट प्रबंधन, और ई विषय पे जानकारी दे रहे डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी, और इनसे बातचीत कर रहे अपने पुष्पेंद्र भैया। तो ले भैया सुनो जा भेंटवार्ता।
4: किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं, विज्ञानिकों के जो सुझाव है वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा, कीट विज्ञानिक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ है। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है।
5: धन्यवाद सर, और आपका और आकाशवाणी झांसी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया।
4: डॉक्टर साहब, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है
5: जी, जी।
4: और हमारे किसान भाई साग भाजी की खेती कर रहे हैं
5: जी जी,
4: और गर्मी में अधिकांशतः हमारे जो किसान भाई हैं वो कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन करते हैं
5: जी जी।
4: तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं इनमें कौन कौन सी फसल आती है?
5: सर, कद्दू वर्गीय फसलों में मुख्यतः आप जानते हैं कि जैसे हमारा कद्दू है, करेला है, लौकी है, और आपकी जो तरोइया है, और साथ में अगर बात करें तो अभी जो मस्क मिलान और वाटर मिलान है, तो ये फ्रूट कद्दू वर्गीय फसलों में ये मुख्यतः फसलें उगाई जाती हैं। और भी माइनर फसलें हैं पर ये मुख्यतः यही फसलें हैं जो हमारे जो बुंदेलखंड रीजन में किसान भाई ले रहे हैं।
4: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इस समय हमारे किसान भाई इस समय बात करें कि कद्दू है, लौकी है, तुरई है, खीरा है
5: जी,
4: ये लगाए हैं और लगाने के बाद अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, इस समय गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताएं कि इस मौसम में अपनी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनकी क्या देखरेख करें।
5: बिल्कुल सही प्रश्न है सर आपका, क्योंकि गर्मी के समय में पता है कि बहुत इस समय टेम्परेचर बढ़ रहा है,

0: तो वैसे भी हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, तो सर्वप्रथम पानी की कमी से और दूसरी लू चलती है, जिससे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हमारे क्षेत्र में लू जल्दी चलने लगती है, तो पौधों में हमारे लू लग जाती है। तो मुख्यतः कद्दू वर्गीय फसलें, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो बहुत हॉलो होता है, आप कभी देखेंगे तो उसको अगर दबाएंगे तो आसानी से दब जाता है, तो पोला होता है वो, तो इस वजह से इसमें जो है ना जो लू से इसमें जो है पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि इस चीज से बचाने के लिए समय समय पे पानी इरिगेशन, क्योंकि कद्दू वर्गीय फसलों को अगर थोड़े एक दिन दो दिन भी पानी की कमी हुई तो वो मुरझा जाती है।
1: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई इस समय सिंचाई प्रबंधन अपनाएं, आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई अवश्य करते रहें। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आप एक कीट वैज्ञानिक हैं, तो अमूमन

0: हमारे किसान भाई इस समय सिंचाई प्रबंधन अपनाएं, आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई अवश्य करते रहें। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आप एक कीट वैज्ञानिक हैं, तो अमूमन देखने में आता है कि कद्दू वर्गियों में तमाम कीट लग जाते हैं।
1: जी जी।
0: तो मुख्यतः कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो कद्दू वर्गीय फसलों को प्रभावित करते हैं?
1: देखिए, अभी जो समय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कद्दू वर्गीय फसलों में सभी में फल आ चुके हैं, बाजार में आने भी लगे हैं, लगभग ये एक महीने से फल आना शुरू हो गए हैं। और जब फल आना शुरू हो जाते हैं तो उसके फल आने के लगभग 20 से 25 दिन, जो आज का समय है बात करें, या 30 दिन के बाद उसमें कीट जोरों से अटैक करता है। तो उसमें दो तीन प्रकार के मुख्यतः कीट लगते हैं, जैसे रेड पंपकिन बीटल, कभी आपने देखा होगा कि ये रेड और पीले का मिक्स कलर का एक बीटल जैसे होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, तो पत्तियों में भी बैठा रहता है, ये पत्तियों अवस्था से ही लगना शुरू हो जाता है, तो ये पूरी पत्तियों को खाके उनको झाझर कर देता है, जिससे कि पत्तियां पूरी खाने से उसमें, यहां तक कि फूलों को भी खा लेता है। तो उसमें फूलों से जो फल बनता है वो नहीं बन पाता है। एक तो ये मुख्य समस्या है। और दूसरी अगर समस्या की मैं बात करूं, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो फल लगने के लगभग 20 से 25 लगना, तो ये लगभग फल लगने के फूल से ही शुरू हो जाता है, तो जो हमारा मुख्यतः हानि होती है, लगभग 30 दिन की जब फसल में जो फूल आना, फूल से फल बनना शुरू होता है, इस अवस्था में क्या है, एक फ्रूट फ्लाई होती है, जैसे हमारे घर में जैसे मक्खी होती है जो घर में, इसी प्रकार की मक्खी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़ी होती है और मटमैले कलर की रहती है।
0: अच्छा।
1: तो ये जो फ्लाई होती है ये फलों में, फूलों में ये एग लेइंग करती है। इसका व्यवहार होता है कि जो इसका एग लेइंग, जो इसका जो अंडे देने की प्रवृत्ति है, वो फल और फूल के अंदर देती है।
0: अच्छा।
1: तो ये इस फूल के ऊपर वाले भाग में अंडा दे देती है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इसलिए ज्यादा नुकसानदायक है कि जो इसका लाइफ साइकिल है, इसका जीवन काल है, ये लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो अंडा देने के 2 से 3 दिन बाद इसमें एक मैगर बन जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि फल हमारा बहुत बाहर से अच्छा है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि फल में छोटा सा कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ रोग सा हो गया या कुछ छेद सा हो गया, इस टाइप का कड़ैल, जिसको कड़ैल कड़ैल बोलते हैं, उस टाइप का हो जाता है,
0: इकड़ा हुआ
1: या टेढ़ा हो गया फ्रूट आपका, या वहां धस गया, इस तरह की जो है, जो होती है, ये फ्रूट फ्लाई की वजह से होती है।
0: अच्छा।
1: और जब ज्यादा ये दिन बाद हो जाते हैं, लगभग 25 दिन बाद, तो जो पत्तियां, जो फूल का जो, या आपका फल का जो स्किन है, वो चेंज होने लगता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और आप देखते हैं अगर छूते हैं तो वो पुलपुला हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उसको अच्छे से दबाते हैं तो फोड़ने पे वो सड़ा हुआ, उसमें स्मेल आती है, और उसमें जो है कीड़े और पानी भी निकलता है। तो वो फूल फल और जो हमारे होते हैं बाजार में, उनकी जो है कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये जब बहुत ज्यादा अटैक करता है तो समझ लीजिए कि लगभग आपका 80 से 90% फ्रूट उसी से खराब हो जाता है। तो और ये इस समय बहुत ही बड़ी समस्या है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये दो कीट आपने बताए हैं।
1: जी जी।
0: एक तो आपका लाल कीड़े वाली बात आपने की है।
1: जी जी।
0: और दूसरा एक सफेद मक्खी की बात।
1: जी जी।
0: और उनसे हमारी जो फसलें प्रभावित होती हैं वो भी आपने बताया है।
1: जी जी।
0: अब बात आती है कि अगर ये इनका प्रकोप हो जाता है, हम बात करते हैं लाल कीट का।
1: जी जी।
0: तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई कैसे फसल को बचाए कि कीट का नियंत्रण हो जाए और फसल सुरक्षित रहे?
1: देखिए, ये दोनों कीट बहुत ही समस्यादायक हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया। इन कीटों का निदान भी उतना ही सरल है, बस हमें जागरूक होने की जरूरत है कि जैसे मैंने बताया कि अवस्थाओं का बहुत महत्व है कि किस अवस्थाओं में ये कीट आते हैं। तो जैसे अब मैं अगर बात करूं रेड पंपकिन बीटल की, रेड पंपकिन बीटल मैंने बताया पत्तियां जैसे आना शुरू होती हैं तो लगना शुरू हो जाता है। कई बार गांव में एक प्रथा है, हम राख भी डालते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो एक राख डालना भी एक नियंत्रण का उपाय है। राख चूंकि क्या हो जाता है कि राख डालने से उसको खाने को प्रेफर नहीं करता है, मतलब रेपेलेंट का काम करता है, तो वो दूर भागता है, उसको किसकिरा किरकिरा लगता है, तो वो नहीं खाता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस कीड़े के नियंत्रण के लिए आप ट्रेप लगाइए।
0: ठीक।
1: बहुत टाइप के जो फेरोमोन ट्रेप्स आते हैं, आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, बहुत सस्ते आते हैं। ये फेरोमोन ट्रेप का दो कार्य होते हैं, एक तो मॉनिटरिंग करना और दूसरा मास ट्रेपिंग करना। जब आप 5-6 ट्रेप लगाएंगे एक एकड़ में, तो आपको मॉनिटरिंग मतलब पता करना कि ये कीड़ा आया कि नहीं आया हमारे खेत में। अगर आपको पता चल जाएगा सही अवस्था, तो उसी समय पे आप नियंत्रण कर लेंगे। और दूसरा मास ट्रेपिंग, हमारा उद्देश्य है कि हम ट्रेप से ही इसको कंट्रोल करें। तो हम उसमें से ट्रेप की मात्रा बढ़ा देते हैं, 12 से 15

0: प्रति जो है एकड़ लगा देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा रूप में एकत्रित होकर के आप उसको किल कर देते हैं। तो लाइट ट्रेप, फेरोमोन ट्रेप, ये लाइट ट्रेप की जो मात्रा है जो बात करें तो एक से दो ही लगाना है एक एकड़ में, और फेरोमोन अगर लगाना है मास ट्रेपिंग के लिए तो 12 से 15, और अगर आप मॉनिटरिंग के लिए लगा रहे हैं तो आपको 5 से 6 लगाना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जैविक नियंत्रण करें, और जब इससे ना हो तब हमारे किसान भाई रासायनिक दवा पे जाएं और फिर उसका छिड़काव करें। अब डॉक्टर साहब बात ये आती है कि जब हमारा किसान भाई जो भी फसल लगाता है, चाहे वो सब्जी वर्गी हो, फसलों में जो कीट पाए जाते हैं उनमें कुछ हमारे मित्र कीट भी होते हैं, कुछ शत्रु कीट भी होते हैं, तो किसान भाई कैसे जाने के अब ये जो कीट लग गया ये हमारा मित्र कीट है और ये हमारा शत्रु कीट है? क्योंकि दवा अगर किसान भाई ने डाल दी तो दोनों कीट मर जाते हैं, शत्रु का भी नुकसान होता है और मित्र का नुकसान होता है। तो अगर मित्र कीट ज्यादा रहेंगे तो फसल में उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब चलते चलते बस ये बताइए कि हमारे किसान भाई मित्र कीट और शत्रु कीट में कैसे समझे कि ये हमारा मित्र है ये शत्रु है, ताकि वो अपने कीटों को बचा सके।
0: जी जी, बहुत ही अच्छा सर प्रश्न है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 2-3 में मित्र कीट आपको बताऊंगा। कॉक्सिनेला मैं आपको बताऊं, ये जैसे लाल कीड़ा मैंने बताया रेड पंपकिन बीटल, इसी के जैसा होता है लेकिन वो थोड़ा गोल होता है।
1: अच्छा,
0: रेड पंपकिन बीटल क्या है, लंबा होता है, ये गोल होता है, और गोल होला इसके अलग जो डार्क कलर का होता है, लाल कलर का होता है, और इसका जो मुंह होता है जो कॉक्सिनेला जो प्रेडेटरी कॉक्सिनेला है, तो इसमें क्या है कि इसका जो मुंह होता है काला होता है, है ना, और ये गोल कलर, इसमें बहुत प्रकार के धब्बे होते हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं, लगभग मान लीजिए कि 40 से 50 स्पीसीज होती हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें जो है कॉक्सिनेला सक्सिमा कुलाटा, कॉक्सिनेला ट्रांसवर्लिस, ये जो 2-3 मुख्यतः स्पीसीज है हमारे बुंदेलखंड में पाई जाती है, लगभग 12 स्पीसीज पाई जाती है, जो दो ये प्रमुख हैं जो सब में ज्यादा पाई जाती। तो इस तरह के अगर गोल गोल कीड़े मिलते हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप मेरे साथ साझा करें, आप मुझे फोन करें, आप मेरा नंबर दे सकते हैं किसान भाइयों को, तो उसमें क्या होगा कि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको और अच्छी जानकारी दे पाएंगे। और दूसरा अगर मैं कीट की बात करूं तो एक रूडीविडी बग होता है, रूडीविडी बग होता है, ये भी एक लाल कलर का कीड़ा होता है, और ये इसके बहुत बड़े बड़े पैर और जो होते हैं अलग ही दिख जाता है, कीड़ा मकड़ी जैसे थोड़ा सा दिखता है शुरुआती अवस्था में। ये क्या खाता है, इसकी इसकी जो मैगट है मैगट को खा जाता है, और इसी तरह कॉक्सिनेला भी जो है इसके जो है दोनों कीटों को खाता है। तो मुख्यतः ये दो कीट है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप मास रिलीज शुरुआती अवस्था में ही 3 से 4 हजार कॉक्सिनेला कर दें या डूडीवुडी वक का, तो मुझे लगता है कि ये दोनों समस्याएं आएंगी भी तो बहुत कम मात्रा में आएंगी, और वैसे आना नहीं चाहिए।
1: डॉक्टर साहब ये तो जानकारी होगी कि हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि अगर मित्र कीट ज्यादा है तो कोई किसी भी रसायन का छिड़काव ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी। अब चलते चलते किसान भाइयों को ये भी बताइएगा कि हमारी जो फसल की निगरानी हमारे किसान भाई करें, निगरानी करते वक्त ध्यान दें कि कौन से कीट हैं फसल में, कोई ऐसा कीट तो नहीं जो फसल को प्रभावित कर रहा है, ये इनका देखरेख करने का जो तरीका है वो किस टाइम करें। किसान भाई निगरानी करने की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं पता होता कि किस समय निगरानी करें ताकि कीटों की संख्या उन्हें ज्यादा दिखाई दे।
0: देखिए साहब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको तो ये कहना चाहूंगा कि तो जब पौधे जैसे रेड पंपकिन बीटल की मैंने बात किया, लाल कीड़ा की जो बात किया, ये पौधे की उगने से ही शुरू हो जाता है, जहां 2-3 पत्तियां शुरू हुई, आप देखते हैं कि कई बार 2-3 पत्तियां आई और पौधा पौधा खत्म। तो किसान भाई जाता है, अगर हमारा रेड पंपकिन बीटल वो वाला है जिसे जो हमारा नुकसान करता है, तो अगर वो कीड़ा दिखता है तो उसके लिए मैनेजमेंट जो बताया उसमें जाए, अगर आपको बेनिफिशियरी दिखता है जो नेचुरल एनिमी जो मित्र कीट जिसको बोलते हैं, तो उनका भी ध्यान में रखते हुए अगर मान लीजिए कि एक आपका हानिकारक कीट है या दो हानिकारक कीट है और दो आपके जो है लाभदायक कीट है, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका जो रेशो है वो ऑटोमेटिक उसको खा लेगा, क्योंकि उसका परभक्षी जो है मित्र कीट है। तो इस तरीके से आप जब रोज खेत में जाएं तो आपको ऑटोमेटिक अपनी फसल से देखें, खासकर मेड़ में बैठ के ना देखें, पौधे के पास जाएं, अगर फूल आ रहा है तो फूल के पास 2-4 फूल देखें, पौधे की टहनियों को देखें, फलों को देखें, तो मुझे लगता है कि आपको ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आ जाएंगी।
1: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, चलती चलती किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सर मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि किसान भाई जब अपनी खेती किसी भी फसल की जब खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले

0: उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हम जब खेती करना तो शुरू कर लेते हैं पर जानकारी का अभाव होने की वजह से हम अपना पैसा लगा देते हैं और बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो किसान भाइयों को यही कहूंगा, किसी भी फसल को बुआई से लेकर के उसकी कटाई तक आपको बोने से पहले पूरी जानकारी होना चाहिए, उसका कौन सा अच्छा बीज है, कौन कौन से उसमें कीट लगते हैं, कौन कौन से उसमें रोग लगते हैं, कब उसमें पानी देना है, कब उसमें फर्टिलाइजर देना है, किस प्रकार का मिट्टी का चयन करना है, ये सब के बारे में जानकारी आपको होगी तो मुझे लगता है कि आपकी फसल अच्छी होगी और आपका भी जीवन खुशहाल होगा।
1: डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, हरो अभी अपन ने सुनी भेंट वार्ता, कद्दू वर्गीय फसलों में कीट प्रबंधन और ई विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा, कीट वैज्ञानिक, और इनसे बातचीत कर रहे थे अपने पुष्पेंद्र भैया। देखो भैया, हरो अपन का जो भी फसलें लगाए उनकी निगरानी तो करनी ही है, और कद्दू वर्गीय फसलें जो किसान भैया लगाए, आशा है उन्हें पूरी जानकारी भेंट वार्ता के माध्यम से मिल गई हुए, और बतकाओ अपनो बिलात हो गो। अब देखो मन कर रहा हूँ कि कछु गावो बजावो हो जाए, और अपन का एक बढ़िया गाड़ी सुनवा रही का गांव है रजनी अडजरिया और उनके संगी साथी ने, तो ले भैया आनंद ले गाड़ी को।

हाँ भैया, रो अबे अपन ने सुनी जे गारी और इखा गाव हतूर रजनी अड़जरिया और उनके संगी साथी ने। और देखो भैया, रो अपन खेती बाड़ी के संगे संगे पशुपालन सोई कर, तो अपने पशुओं को खास ख्याल ही गर्मी में रखने, 3-4 बार ताजो पानी पिलाऊ ने, और ज्यादा गर्मी जब हो जात तो दुधारू जो पशु हैं उनकी दूध देवे की क्षमता कम हो जात, यानी कम दूध भी देने लगत, तो अपन खा उनकी जो आहार की व्यवस्था है वह बढ़िया करने, सुपाच्य आहार देने, गरिष्ठ आहार नहीं देने, और उनके भोजन में हरे चारे की मात्रा संतुलित मात्रा में देने, और खनिज तत्व तो उनकी सानी में अपन का मिला के देने, जिससे शरीर जो है मजबूत बने रहे, और खास तौर से पानी की कमी अपन का अपने पशुओं का नहीं होने देने। पानी की कमी से भी पशु बीमार हो जात, तब ही अपन ही गर्मी से अपने पशुओं का बचा सकत। और चलत चलत अपन से कौचाएं कई बढ़त भई गर्मी में, अपने स्वास्थ्य को ख्याल भी अपन का रखने, काय के लू इतनी बढ़ गई, और अगर अपन ने असावधानी राखी, घर से जब बाहर निकले तौलिया ना बांधी, और खाली पेट अगर निकल गए तो लू अपन का लग सकत। लू में का होत भैया के शरीर को तापमान एकदम बढ़ जात, और शरीर की त्वचा जो है रूखी हो जात, उल्टी दस्त भी हो सकत, तो अपन का जी समस्याएं ना हो पाए इसे अपन का बचाव करे रखने, पानी की कमी ना हो, पानी खूब पीने, तरल पदार्थन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने, तब ही अपन हीट स्ट्रोक यानी लू से बच सकत। बतकाओ तो और करने तो, लेकिन स्टूडियो की घड़ी आगे बोलवे की इजाजत नहीं दे रही, तो अपन से कौचाए के कार्यक्रम में जो भी सुझाव अपन दव चाउत हुए, कार्यक्रम संबंधी जानकारी अपन लव चाउत हुए, तो आकाशवाणी झांसी के फेसबुक पेज से जुड़ के कमेंट बॉक्स में अपन बता सकत के का कार्यक्रम अपन कहा अच्छी लग रहे, और कौन जानकारी अपन चाउत हो। चलवे की पहला लिख लो कार्यक्रम को पतो, कार्यक्रम चौपाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128, यही के संगे अमरदीप भास्कर कहा गया देव। नमस्कार।

मुताबिक गुमशुदा कुमारी मुस्कान पुत्री बालकृष्ण उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम अखथरी थाना समथर जिला झांसी जो दिनांक 21/4/2026 को रात्रि 2 बजे से लापता है। इनके संबंध में जानकारी इस प्रकार है। कुमारी मुस्कान पुत्री बालकृष्ण का रंग गोरा, इकहरा शरीर, आंख कान नाक औसत हैं। कुमारी मुस्कान की उम्र 20 वर्ष है, कद 4 फुट 6 इंच है। मुस्कान लाल रंग का कुर्ता व लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े हैं। जिस किसी को भी कुमारी मुस्कान पुत्री बालकृष्ण के बारे में कोई जानकारी मिले तो वह कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी को प्रेषित कर सकता है। श्रोताओं, ये तो थी गुमशुदा की जानकारी और लीजिए आप सुनिए हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 6:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर आधारित कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

हर रोज की तरह प्रादेशिक समाचार अन प्रसारित किए जाएंगे संध्या 7:19 पर, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अन प्रसारित करते हैं। लखनऊ केंद्र से ही अन प्रसारित कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता आप सुन सकेंगे संध्या 7:31 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अन प्रसारित किए जाएंगे।

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा एक कलाकार रात्रि 8:15 पर, समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे रात्रि 9 बजे। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, रात्रि 11:00 अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, आपका मनपसंद फोनिंग फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 9:30 पर। इस कार्यक्रम में स्वर व प्रस्तुति प्रीति सक्सेना की होगी और प्रस्तुत करता होंगी अंजलि कुमारी।

श्रोताओं, हम एक बार आपको फिर याद दिला दें, आज संध्या 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अपने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी, स्वर व प्रस्तुति प्रीति सक्सेना की, प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित

होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नए पुराने गीत सुहाने कार्यक्रम। श्रोताओं, ये कार्यक्रम फिल्म संगीत पर, फिल्मी नगमों पर आधारित है। तो लीजिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं।

श्रोताओं, यह है कार्यक्रम का पहला नगमा, स्वर मोहम्मद रफी का, नीरज के बोल हैं इकबाल कुरैशी का संगीत, फिल्म का नाम है चा चा चा। तो लीजिए समात फरमाइए, फिल्म संगीत का कार्यक्रम, नए पुराने गीत सुहाने का यह पहला नगमा।

0: काय भैया कछु अनमने दिखा रहे का बात है
1: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: हैं? अपन को भैया पता नहीं आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान।

श्रोताओ, यह कार्यक्रम का अगला गीत नवराज हंस और रोचक की आवाज में। फिल्म है वाटला हाउस।

श्रोताओ, ये थे नवराज हंस और रोचक। फिल्म थी बाटला हाउस। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है बागी 3 फिल्म से। स्वर रोचक और फेडसान का है। गुरप्रीत सैनी ने गीत लिखा है और संगीत दिया है रोचक कोहली ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 103 पर आकाशवाणी के झांसी केंद्र से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। लीजिए समाप्त फरमाइए प्रोग्राम का अगला नगमा।

श्रोताओ, ये थे किशोर कुमार। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था एक नजर। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बर्मा मलिक के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है कर्तव्य।

0: जब आवाजों का सफर शुरू हुआ तब ना कोई स्क्रीन थी ना इंटरनेट, बस था तो केवल एक अटल विश्वास, आकाशवाणी।
1: देश के हर कोने तक हर जरूरी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, एक भरोसेमंद साथी, आकाशवाणी।
0: सरहदों पर डटे हमारे जवान, जहां हालात सख्त हैं और मौसम बेदर्द, वहां आकाशवाणी बनती है घर की एक प्यारी सी आवाज, जो देती है दिलों को हौसला।
1: तूफान से पहले की हो चेतावनी या संकट के समय का सहारा, आकाशवाणी बना।

0: हर विकेट धड़कता था हर दिल आकाशवाणी की आवाज से।
1: संगीत, साहित्य, संस्कृति, हर रंग हर राग आकाशवाणी ने सहेजा है, हमारी विरासत का हर एक अनमोल हिस्सा।
0: ये सिर्फ एक रेडियो नहीं, ये एक एहसास है, एक यकीन है, आवाजों का वो कारवां जो 90 वर्षों से चला आ रहा है हमारे साथ साथ।
1: आकाशवाणी के 90 साल, एक सुहाना सफर,
0: आवाज का एक अटूट बंधन।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का गीत आनंद बख्शी के बोल हैं। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, स्वर अनवर का है। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: بن گئی.
1: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का आखिरी नगमा. स्वर था अनवर का, फिल्म थी अर्पण, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने. इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं खत्म होता है. FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है. संध्या के 7:19 होने को है. अगला कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से. कृपया प्रतीक्षा करें.

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी देश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
2: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

0: या
1: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
0: शीर्ष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
2: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले दो सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉ हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह, जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉ मानवेन्द्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
2: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
6: जिले के

0: सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
2: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी चोटियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई है।
1: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं। पहली भेंट वार्ता है थायराइड ग्रंथि की समस्याएं। ये भेंट वार्ता विश्व थायराइड दिवस पर विशेष है। इस भेंट वार्ता में प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव से बातचीत कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: हर वर्ष मई माह में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड हमारे गले में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिसमें किसी कारणवश अगर कुछ समस्या आ जाए तो पूरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव साहब हैं, जो SGPGI लखनऊ के एंडोक्रीन मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, और आज हम जानेंगे कि थायराइड ग्रंथि से मानव स्वास्थ्य का कितना गहरा संबंध है, थायराइड ग्रंथि हमारे लिए क्या क्या करती है, इसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है।
2: थायराइड ग्रंथि जो है गले में होती है, वो सामने की तरफ एक बटरफ्लाई के शेप में, यानी एक तितली के शेप में होती है, और इसका मुख्य काम है थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करना, जिसे हम T3 T4 के नाम से जानते हैं, और यह हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म

0: ऑटिज्म को नियंत्रित करती है, हमारे वजन को भी नियंत्रित करती है एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा यह है कि ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं जो इस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं वो हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हमारे हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं। हाँ, इसके बगल में अमूमन चार छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी होती हैं। तो इनका काम होता है शरीर में जो कैल्शियम है उसको रेगुलेट करना, कैल्शियम कम ज्यादा ना हो और एक नॉर्मल मात्रा में बना रहे, उससे हड्डी को मजबूती प्रदान होती है, यह उसका मुख्य काम है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथियां होती हैं ये आपस में एक कोहेसिव ढंग से काम करती हैं कि इनका दोनों का अलग अलग काम?
0: नहीं नहीं, ये आपस में अलग अलग काम करती हैं।
1: अच्छा।
0: इनका कोई आपस में एक दूसरे के साथ कोई रेगुलेशन नहीं
1: अच्छा,
0: होता
1: अच्छा,
0: है।
1: जी डॉक्टर साहब, थायराइड की जो समस्या होती है वो मुख्य रूप से या तो हाइपर और हाइपो, तो थोड़ा संक्षेप में इसको भी बता दीजिए कि क्या क्या ये समस्याएं हैं और क्या लक्षण होते हैं।
0: थायराइड ग्रंथि में किसी कारणवश अगर कोई बीमारी हो जाती है, कुछ खराबी होती है, तो दो प्रकार की तकलीफ हो सकती है। एक होता है हाइपोथायराइड, इसका मतलब कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी होना, जिसमें T3 T4 लो होगा और एक TSH जो है हाई हो जाता है। इसमें आदमी सुस्त रहता है, उसका वजन बढ़ता है, शरीर में थोड़ी सूजन आ जाती है, आवाज थोड़ी बदल जाती है और उसका हार्ट रेट स्लो हो सकता है।
1: अच्छा।
0: दूसरा एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि T3 T4 बहुत बढ़ जाएगा और TSH एकदम लो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आदमी का जो पल्स रेट है बहुत बढ़ जाएगा, उसके हाथ वगैरह कांपे हैं और वजन कम होने लगता है। जैसा कि हमने बताया कि जो हाइपोथायराइड है वह बहुत कॉमनली हमारे पॉपुलेशन में होता है, आप कह सकते हैं कि 6-10%। जहां पे आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, जहां आयोडीन की मात्रा सही होती है वहां पे हाइपोथायराइड की कमी कम होती है। और इसका जो टेस्ट है बहुत आसानी से हो जाता है, सब जगह अवेलेबल है और कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे पास कोई जैसे हाइपोथायराइड के सिम्टम्स हैं या उसके लक्षण है तो हमें जांच करा लेनी चाहिए, जिसमें T3, T4 और TSH इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर और जरूरत पड़ती है तो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन ये बाद में कराए जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमेशा आयोडीन की बात होती है, आयोडीन क्या काम करता है थायराइड ग्रंथि के लिए?
0: तो जो आयोडीन है यूजली हमारे जो भोजन है उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और जो हम नमक लेते हैं वो हमेशा आयोडीन युक्त नमक होता है। और आयोडीन का काम ये होता है कि जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन वहां से जाता है उसकी मदद से T3 T4 बनता है।
1: अच्छा।
0: और अगर आयोडीन की कमी होती है तो T3 T4 की मात्रा कम हो सकती है और उससे घेंघा रोग भी होने का डर रहता है।
1: ज्यादा समस्या थायराइड की क्या है, हाइपर है या
0: हाइपोथायराइड ज्यादा होता है और यूजली ये महिलाओं में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, और अक्सर ये देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा हाइपोथायराइड की बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है, और उम्र जैसे ज्यादा बढ़ती जाती है तो भी हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। यह हमारी पॉपुलेशन में आप 6-10% लोगों को हो सकती है।
1: अब अगर थायराइड पर बात हो रही है तो उपचार की बात हो, अगर इस ग्रंथि में किसी प्रकार की विकृति आ गई हो तो उपचार क्या है?
0: उपचार में हाइपोथायराइड पहले हमें तो कंफर्म कर लेना चाहिए कि हाँ हाइपोथायराइड की समस्या है, और इसका उपचार बहुत ही सिंपल होता है। इसमें दवाएं अवेलेबल हैं, जैसे थायरोक्सिन दवा आती है वो लिया जाता है। सो इस पर निर्भर करता है कि आपको दवा लाइफ लॉन्ग लेनी है या कुछ समय बाद बंद करके हम देख सकते हैं कि हमारा थायराइड हार्मोन अपने आप ठीक हो गया है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड से कुछ और भी समस्याएं होती हैं जो पूरे हमारे जो हार्मोनल सिस्टम को या इंडोक्रीन सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं? डायबिटीज हुआ या और ओबेसिटी हुआ या कोई ग्रोथ की समस्या?
0: थायराइड से जैसे अगर बच्चों में जैसे बताया कि उनका मेंटल डेवलपमेंट कम हो सकता है, उनकी हाइट कम हो सकती है, बड़ों में थोड़ा अगर हाइपोथायराइड को ट्रीट नहीं किया गया तो वजन बढ़ने का डर होता है, उनको सुस्ती रहेगी, उनका हार्ट रेट वगैरह स्लो हो सकता है। एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी होने का डर रहता है। औरतों में एक और चीज पाई गई, अगर वो हाइपोथायराइड है ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के भी इशू आते हैं।
1: अच्छा। अगर डॉक्टर साहब थायराइड ग्रंथि में नोड्यूल्स बन जाए, तो जैसे कि आपने बात की कि दवाओं से कंट्रोल तो हो जाता है, तो क्या दवाओं से कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा या फिर कुछ सर्जिकल भी उपाय होते हैं?
0: तो नोड्यूल ज्यादातर उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं जहां आयोडीन की कमी होती है।
1: अच्छा।
0: तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, ज्यादातर नोड्यूल जो है बिनाइन होते हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब
1: कैंसरस
0: नहीं होते हैं, और इसको आसानी से जैसे अल्ट्रासाउंड द्वारा या FNAC मतलब एक सुई की जांच के द्वारा टेस्ट किया जा सकता।
1: अच्छा।
0: है
1: बायोप्सी जिसको
0: हाँ बायोप्सी या FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं, तो इसके द्वारा उसको कंफर्म किया जा सकता है। अगर नोड्यूल बहुत बड़ा है तो सर्जरी किया जा सकता है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है और कोई नुकसान नहीं कर रहा है तो उसे वेट एंड वॉच भी किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या साझा करना चाहते हैं इस माह जो मई में हम विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं?
0: जो वर्ड

0: हाइपोथायराइड डे, उस पर यही कहना चाहता हूँ कि यह हमारे पॉपुलेशन के अंदर करीब 6 से 10% लोगों को होती है और ये बहुत साधारण सी बीमारी है। इसका जांच बहुत आसान है और अगर बीमारी निकलती भी है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान होता है। और ट्रीटमेंट के अलावा आदमी को अपने वजन का भी ध्यान देना चाहिए, वह सही मात्रा में आयोडीन मतलब आयोडीन नमक वगैरह ले रहा है, इस सबका भी ध्यान देना चाहिए।
1: सर ये भी जानना चाहेंगे कि 2026 में विश्व थायराइड दिवस की थीम क्या है और ये किस तरह पब्लिक हेल्थ से जुड़ी है और थायराइड को किस तरह ये एड्रेस करती है।
0: तो 2026 में जो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जा रहा है उसकी थीम है थायराइड एंड न्यूट्रिशन। इस दिन पर लोगों को अवेयर किया जाता है और इसका मेन एम ये है कि जैसे न्यूट्रिशन में मनुष्य को एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन लेना चाहिए, उसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं जो थायराइड हार्मोन के बनने में मदद करते हैं, जैसे सेलेनियम और जिंक हुआ। तो अगर एक पौष्टिक भोजन लेंगे तो इसमें ये ट्रेस एलिमेंट पहले से प्रेजेंट रहते हैं और हम थायराइड की बीमारी से बच सकते हैं।
1: संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के एंडोक्रीन मेडिसिन विभाग में क्या थायराइड की अलग से कुछ क्लिनिक है या कुछ डेज है जो डेडिकेटेड है?
0: हाँ, संजय गांधी में हमारी 2 ओपीडी चलती है, एक डेडिकेटेड डायबिटीज पेशेंट के लिए होती है, दूसरी एंडोक्राइन बीमारियों की होती है, जिसमें हम थायराइड के पेशेंट मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन देखे जाते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थायराइड जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात की और इसकी विकृतियों पर प्रकाश डाला, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसके उपचार के उपाय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
2: स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और भेंट वार्ता जिसका विषय है चक्कर आने का कारण और कान की समस्या। इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चंद्र से बातचीत कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
3: दोस्तों, चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं पर उसमें से एक कारण होता है कि कोई कान की समस्या आपको है। चक्कर आना और कान की समस्या के बीच संबंध पर आज विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चंद्रा जी जो KGMU के ENT विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू
3: डॉक्टर साहब। किन किन कान की समस्याओं से चक्कर आ सकता है?
4: सभी श्रोताओं को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 2-3 लाइनों में इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। हमारे शरीर में चक्कर जो है वो 3 चीजों से हम अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। एक हमारी आंख होती है, एक कान का अंदरूनी हिस्सा जिसको हम इनर ईयर कहते हैं, तीसरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी और बाकी की मांसपेशियां। जब इन तीनों चीजों का बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है तब हमें ये चक्कर का अनुभूति होती है। जनरली लोग चक्कर शब्द को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चक्कर का अर्थ होता है आपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, जो एनवायरमेंट है, उसका गोल गोल चारों तरफ घूमना या उस व्यक्ति विशेष का उन सब चीजों के रिस्पेक्ट में गोल गोल घूमना। अब कान की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे इनर ईयर और बैलेंसिंग ऑर्गन को भी इफेक्ट करती हैं और हमें चक्कर आ सकता है, जिसमें बैलेंसिंग नर्व होती है जिसको हम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं। इनर ईयर में एक ऑर्गन होता है बैलेंस का जिसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम के जो अपनी जगह से हट जाते हैं, उसको हम BPPV कहते हैं। कुछ कान बहने के कारण भी चक्कर आते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम मीनियस डिजीज कहते हैं, जिसमें कम सुनाई देना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, इन सब के भी सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कान से रिलेटेड भी, हमारी रीढ़ की हड्डी से भी रिलेटेड होते हैं और हमारी आंखों से भी रिलेटेड होते हैं।
3: डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ कम सुनाई भी देता है या कुछ और लक्षण होते हैं अगर चक्कर की समस्या?
4: कुछ ऐसी बीमारी जैसे मीनियस डिजीज, इसके जितनी बार इसका अटैक होगा, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगी हर बार उसको थोड़ा थोड़ा करके कम सुनाई देने लगेगा। हाँ, सीटी जैसी जो आवाज है इसको हम टिनाइटस कहते हैं।
3: अच्छा।
4: जब हमें बाहर सराउंडिंग की आवाज कम सुनाई देने लगती है तो अंदर का जो ऑर्गन होता है उसकी कुछ आवाजें सुनने की क्षमता कान डेवलप कर लेता है, जिसे टिनाइटस कहते हैं और ये कई बीमारियों का एक हिस्सा होता है।
1: डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि किसी को शक होता है कि कान की ही समस्या है तो उसको क्या करना चाहिए?
4: मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही उनको चक्कर की अनुभूति फीलिंग अगर आती है तो स्पेशलाइज्ड लोगों से मिलें। यह चक्कर कान का है या यह चक्कर आंखों की वजह से उत्पन्न हो रहा है या इम्बैलेंस चलने की वजह से उत्पन्न हो रहा है, कार्डियक कॉज भी हो सकते हैं, और भी कई सारे ऑर्गन्स की छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो चक्कर के फॉर्म में दिख सकती हैं। तो कभी भी इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप दवा लेना, मैं बिल्कुल भी सबको इस चीज के लिए मना करूंगा।
3: डॉक्टर साहब, जांचें क्या होती है?
4: जांचों में सबसे महत्वपूर्ण होता है पेशेंट के

0: साथ बैठ करके थोड़ा सा समय निकाल के उससे हिस्ट्री लें, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का चक्कर कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, चक्कर के साथ और क्या क्या होता है, चक्कर के समय क्या होता है, चक्कर कितनी देर में ठीक होता है। इन सब चीजों की हमको एक प्रारूप जो हमारा हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट होता है, जब हम उसमें भर लेते हैं, समझ में आता है कि अब हमको एक एक करके क्या क्या जांच करनी है ताकि अलग अलग बीमारियों को हम रूल आउट कर सकें।
1: क्या इस तरह की समस्या ओल्ड एज में या सीनियर सिटीजन्स को दिखाई देती हैं? ये
0: सीनियर सिटीजन्स में चक्कर आना एक नॉर्मल है। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे बुजुर्ग हैं, आंख में मोतियाबिंद है, शाम हुई कहीं निकले लड़खड़ा गए, तो ज्यादातर लोगों में शब्दों को बहुत अच्छे से बता नहीं पाते हैं, वो कह नहीं पाते हैं, वो हर चीज का एक ही जवाब होता है, चक्कर आ रहा है। हो सकता है वो इम्बैलेंस हो सकता है, उस समय वो एकदम से चले हों और उनकी ब्लड प्रेशर कुछ कम हुआ हो, आंखों के सामने अंधेरा आया हो, उसको भी लोग चक्कर कहते हैं। तो हर उम्र में चक्कर आ सकता है, बुजुर्गों में तो बहुत सारे कारण होते हैं और एक तरफ से एक एक चीज को हम अपनी जांचों द्वारा एक्सक्लूड करते हैं, तब डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है। और कई बार वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है कि एज हो गई है, सारे सिस्टम्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो ब्रेन में उनका इंटीग्रेशन न होने के कारण भी प्रॉपर वे में
1: कोऑर्डिनेशन
0: की वजह से भी।
1: डॉक्टर साहब, एक मेरे मित्र हैं, रियल लाइफ एग्जांपल रखना चाहूंगा अपने श्रोताओं के साथ, कि उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल फोन का बहुत यूज करता हूं, इसके कारण जो क्रिस्टल है डॉक्टर ने बताया कि वो डाइल्यूट हो गए या गल गए हैं, तो इसके कारण भी क्या चक्कर आ सकता है?
0: ज्यादा मोबाइल फोन के यूज से बीपी पीवी जैसी दिक्कत तो नहीं आती है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमारे कभी चोट लगने के कारण इनका बैलेंस या जिस जगह पर ये स्थित होते हैं वहां से लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स में आ जाते हैं, या ये किसी जर्की मूवमेंट या एकदम सडन मूवमेंट ऑफ नेक से आ जाते हैं,
1: बट
0: एक्यूट कारण ही होते हैं, लेटे हैं करवटली डिसलॉज हो गए अपनी जगह से।
1: डॉक्टर साहब, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि अपनी बात को हम आगे बढ़ाएं, तो दो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे कि अपने कान की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, और इस वार्ता में कुछ अगर इम्पोर्टेंट बातें छूट गई हो तो वो हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से साझा करें।
0: कान का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं या जो नवजात शिशु होते हैं, बचपन से ये ध्यान रखें कि बच्चों के कान में तेल ना डाला जाए। बच्चों का कान यदि लगता है गंदा है तो कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाकर के ही साफ कराएं, वरना वो पर्दे को चोट मार सकते हैं। तीसरा, आजकल हम लोग हमेशा अपने कान में हेडफोन ईयरबड्स मेजॉरिटी टाइम पे लगा के रखते हैं या मोबाइल पे लंबी लंबी बात करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जुकाम खांसी होने पर अपने कान को बचाव करना चाहिए, तुरंत दवाई लेना चाहिए, लाउड म्यूजिक जहां पर बज रहा हो वहां से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और हमारे श्रोताओं को आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव ऐसे मिलता रहेगा भविष्य में भी। आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे, चक्कर आने का कारण।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लखनऊ से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM 103 पर, ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है बुंदेली लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम खुशबू माटी की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज में। ये लोकगीत है देवी गीत।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: हैं? अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510

0: 2320068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई पुण्य, तो अब ना हो हमारे किसान भैया परेशान।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुशीला देवी की आवाज में आप सुन रहे थे बन्ना गीत। इसके साथ ही बुंदेली लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम खुशबू माटी की अब यहीं समाप्त होता है। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: विक्रम,
1: ऐसे ही मैंने सोचा पूछ लूं, आज शाम को तो आ रहे हो ना?
0: कहाँ?
1: क्यों भाई, आज कमला के यहाँ?
0: कमला के यहाँ? वहाँ क्या है भाई?
1: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है ना?
0: मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इनविटेशन आया नहीं। व्हाट्स द ओकेजन?
1: अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
0: होगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
1: चलो मैंने बता दिया, काफी है, अब आ जाओ। बहुत से पुराने यार दोस्त मिलेंगे, खूब हंगामा रहेगा। 6:30 बजे के बाद किसी वक्त भी।
0: मुश्किल है यार।
1: फॉर्मल इनविटेशन के बिना जाना शान के खिलाफ है क्या?
0: क्या बात करते हो यार, कमला के यहाँ पार्टी हो तो फॉर्मेलिटी कैसी?
1: मुझे यकीन है उसने तुम्हें इनविटेशन कार्ड जरूर भेजा होगा, हो सकता है डाक में कहीं रह गया।
0: नहीं नहीं, ये बात नहीं, इनविटेशन की ऐसी कोई बात नहीं। यूं भी कमला से मिले कितनी देर हो गई है मुझे, कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे, हो सकता है साल ही गुजर चुका हो। मैं खुद कई बार सोच चुका हूँ कि चल के उसे मिलाऊं, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता यार। देखो ना, 6 बज भी चुके हैं और मैं अभी तक ऑफिस में ही बैठा हूँ।
1: लेकिन वहाँ तो 6:30 बजे के बाद पहुँचना है यार।
0: मैं जरूर आ जाता शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन कर देते। अब शाम को मुझे एक और पार्टी में जाना है।

0: वहां भी बस शक्ल दिखा के भागूंगा। 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है मुझे। हेड ऑफिस से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है। फिर जाने उनके साथ कितनी देर लग जाए। आई एम रियली वेरी सॉरी।
1: देख लो, वक्त मिले तो आ जाना।
0: भाई मुश्किल ही है, फिर भी कोशिश करूंगा। मगर प्लीज कमला से कुछ ना कहना।
1: नहीं
0: नहीं, थैंक्स फॉर कॉलिंग।
1: बाय बाय।
0: बाय बाय। क्या लिखा था?
2: कॉपी ऑफ रिची
0: बीइंग एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस, थैंकिंग यू, योर फेथफुली, एटसेट्रा एटसेट्रा।
2: नेक्स्ट सर?
0: नहीं, बस बाकी ये खत कल सुबह आकर करेंगे। थैंक यू। बस जाकर उनको जल्द से टाइप करना, मुझे जाना है।
2: यस सर, इन अ मिनट।
0: सुनो, आज की डाक से मेरा कोई पर्सनल खत तो नहीं आया?
2: नो सर, डाक तो मैंने सब आपको दे दी थी। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, शायद मेरे
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं होगा। मैं कोई खास खत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चलो देख लो शाम की डाक में शायद।
2: यस सर।
0: विक्रम?
3: यस सर।
0: जी हाँ जी हाँ, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जी हाँ जी हाँ, आई शेल एक्सप्लेन टू हिम सर। यस सर, वेरी वेल सर।
4: सर
0: कागज और बैग मेरी गाड़ी में रख दो।
4: यस सर।
2: आई एम सॉरी सर, आपका कोई पर्सनल लेटर नहीं है।
0: ओह इट्स ऑल राइट, खत टाइप हो गया?
2: यस सर।
0: ये लो, बाकी खत ऐसे ही यहीं छोड़ दो, सुबह डिक्टेट करवा दूंगा।
2: राइट सर।
0: राइट
2: सर। सर आप अपना पेन भूल गए थे।
0: ओह थैंक यू, मैं ग्रीन पार्क की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँ?
2: नो थैंक यू सर, मुझे अभी थोड़ा काम और करना है।
0: अच्छी बात है।
2: गुड नाइट सर।
0: गुड नाइट।
5: आज कमला के यहाँ रिसेप्शन है भाई। अरे उसका भाई इंग्लैंड से मेम ब्याह कर लाया है, तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है। तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है। तुम्हें नहीं मालूम? अजीब बात है।
6: विक्रम तुम इस वक्त यहाँ कैसे आन पहुँचे?
0: क्यों कमला, मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था क्या?
6: लेकिन मेरा आज यहाँ आने का बिल्कुल इरादा नहीं।
0: तो फिर तुम यहाँ कैसे आए?
6: कॉलेज से घर पहुँची तो बात क्यों ना सुना समझा, सोचा एक आध रिश्ते तैयार कर लूँ, कॉफी निकाल कर बैठी तो अचानक याद आया कल विनीता का बर्थडे है। तुम जानो ये मॉडर्न लड़कियाँ बर्थडे पर प्रेजेंट नहीं दिया जाए तो अनकल्चर की डिग्री दे डाल।
0: तो तुम विनीता के लिए प्रेजेंट खरीदने निकली?
6: ढूंढने निकली थी प्रेजेंट, मिल गए तो अब मिल ही गए हो तो कॉफी के लिए तो पूछ लो।
0: हाँ चलो, कहाँ चले?
6: सुना है ग्रीन लाइट में कॉफी के साथ साथ म्यूजिक मुफ्त मिलता है।
0: जी नहीं, म्यूजिक की कीमत वो कॉफी में ही लगा लेते हैं।
6: बड़े कंजूस होते जा रहे हो। हाँ भाई, मैं तुम्हारी वो तो नहीं हूँ ना। अच्छा चलो, कॉफी के पैसे अपने अपने।
0: तुम्हें डायलॉग सुनने का बहुत शौक है क्या? तुम चाहती हो मैं रोज रोज दिल पे हाथ रखकर आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं?
6: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फिर चलें ग्रीन लाइट?
0: चलो ना, लेकिन पहले अपना प्रेजेंट तो खरीद लो, दुकानें बंद हो जाएंगी।
6: प्रेजेंट खरीदने का आइडिया मैंने फिलहाल ड्रॉप कर दिया।
0: पैसे कम पड़ गए होंगे।
6: पैसे कम पड़ गए होंगे, आज ही पॉकेट मनी की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है।
0: फिर तो ग्रीन लाइट का पूरा बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा।
6: तुम्हें शर्म नहीं आएगी?
0: बिल्कुल नहीं, तुमसे भला मुझे क्या शर्म आएगी?
6: मुझसे नहीं, वेटर से तो आएगी।
0: वहाँ तो बिल मैं ही पे करूंगा, तुम पैसे मुझे पहले से ही पकड़ा दे।
6: बड़े ठीक।
0: देख लो तुम कॉलेज से सीधी घर चली गई, ये भी ना सोचा कि मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा। फिर भी तुम्हें ढूंढ ही लिया।
6: जी हाँ, पूरे 10 मिनट गेट पर इंतजार किया था जाने से पहले।
0: 10 मिनट क्या बहुत होते हैं?
6: कभी कभी ऐसा लगता है जैसे 10 बरस बीत गए। फिर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पहुंचकर सुना सुना क्यों लग रहा था? इतनी सटल बातें अगर तुम समझ सकते होते तो अपना बेड़ा न पार करता। चलो हमारी
0: I'm sorry, कमला, आज का प्रैक्टिकल बहुत लंबा था, लेकिन खत्म करते ही तुम्हें ढूंढने निकल खड़ा हुआ। ना ना ना ना, मेरे दिल ने कहा तुम घर पर नहीं होगी, बल्कि जरूर कनॉट प्लेस में शॉपिंग करती हुई।
6: दिल ना हुआ रडार हो क्या?
0: जब मिलने की ख्वाहिश हो तो दिल की आवाज रडार से भी बढ़ के काम करती है। देख लो तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कुदरती तौर पर खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि तुम कहाँ हो।

0: तुम्हारी सांसों की लहरें मेरे कदमों को खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच लाती हैं।
1: सुनो, ये आजकल के मॉडर्न राइटर्स ने कोई नई तरह के डायलॉग नहीं लिखे?
0: खुद ही तुम कहती हो कि मैं
1: अब चलकर कॉफी पिलाओ, कितनी देर हो गई है। माँ ने कहा था अंधेरा होने से पहले घर लौट।
0: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इन अम्माओं को अपनी बेटियों की इतनी फिक्र क्यों खाए रहती है। अगर बाहर से लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
1: तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा रहता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार फूल जाता है। फिर माँ बेचारी क्या करे, बेटी तो जाने उनके लिए पराया धन है जिसे उसके मालिक के हवाले किए बिना उनको चैन नहीं पड़ता।
0: तुम किसकी अमानत हो?
1: तुम ही नहीं हो।
0: तुम बता दो।
1: मुझे भी नहीं मालूम।
0: ये कैसे हो सकता है?
1: कहा ना, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम। कहा है तुम्हारा ग्रीन लाइट?
0: वो रहा।
1: चलो चलकर कॉफी पिए।
0: तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
1: कहा ना, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम।
0: तुम्हारी मर्जी।
1: सुनो, इनके यहाँ वो गाना है।
0: कौन सा?
1: छोड़ो, तुम्हें गाना सुनकर भी क्या समझ आएगी?
0: बस छोड़ गई मैदान।
1: क्या मतलब?
0: एक सवाल का सीधा जवाब देते हुए घबरा क्यों गई?
1: शट अप।
2: गुड इवनिंग अंकल।
3: ओ गुड इवनिंग विक्रम।
2: हेलो आंटी।
4: अच्छे हो विक्की?
2: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी।
3: अरे भाई, ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
4: तेरी बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कभी के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो। वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है।
2: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ। अरे ये कहाँ है सब लोग?
4: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ, मैं चलूँ।
2: नहीं नहीं आंटी, आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ।
3: ही इज ए स्मार्ट बॉय।
4: बहुत, देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है। अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा। किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो।
3: अरे भाई, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
4: हूँ। हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
3: मैंने गौर नहीं किया।
4: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है, जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना, आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
3: देख रहा हूँ।
4: कीवी से लकी गर्ल।

यादों की परछाइयां सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनेगा कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है फिल्मी नगमों पर आधारित कार्यक्रम एक कलाकार। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं स्वरों की मलका गायिका हेमलता की आवाज के चंद्र गीत। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अनजान के लिखे गीत से। कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर और आवाज है आज की कलाकार हेमलता की।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

Akashwani at 90. श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हेमलता का ही है।

श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं FM 103 पर आकाशवाणी के झांसी केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार, और आज की कलाकार हैं गायिका हेमलता। आइए सुनते हैं हेमलता की ही आवाज में कार्यक्रम का अगला नगमा। शब्द लिखे हैं शैलेंद्र ने, सलिल चौधरी का संगीत है और फिल्म का नाम है परख।

लीजिए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म गीत गाता चल का ये गीत, जिसमें हेमलता के साथ स्वर दिया है चेतन जसपाल और साथियों ने। गीत बसंगीत रविंद्र जैन का है।

0: श्रोताओ, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक कलाकार अब यहीं खत्म होता है। इस कार्यक्रम में आज की फनकार थी हेमलता। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शिल्पधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

0: वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी पलानास्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
5: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: Against the assessment of
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।

0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
2: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Avinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
1: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
3: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides, Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. Among those honored with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar, Taga Ram Bhil, Ratilal Mohanlal Borisagar,

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

संदेश की को सुना। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी नगमों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हैलो झांसी। सर्व प्रस्तुति सहयोग प्रीति सक्सेना का है और इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी। तो लीजिए समात फरमाइए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हैलो झांसी।

0: जी हाँ श्रोताओ, आपने पुकारा और हम चले आए आपकी फरमाइशी गीतों को अपने साथ लेकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें आपके अपने कार्यक्रम हेलो झांसी में। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, साथ ही गर्मी अपने परम ताप पर है। अब हमारे कौन से श्रोता कैसे गर्मियों को बिता रहे हैं, क्या क्या उपाय कर रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो झांसी कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, हमारे श्रोता का क्या नाम है?
1: हाँ दीदी, मैं बहुत आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, 1991 से आकाशवाणी झांसी से जुड़ा हुआ हूँ दीदी
0: जी।
1: तो मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, ग्राम चेताहारी, तहसील नरवत, जिला शिवपुरी से बोल रहा हूँ दीदी।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: हाँ दीदी, मैंने आज पहली बार तो फोन लगाया और पहली बार में ही फोन लगा दी मेरा।
0: चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। अपने बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: दीदी मैं गाय की सेवा करता हूँ और खेती किसानी भी करता हूँ, और अभी इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं श्रोताओं से और भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि घाम में ना निकले। अगर घाम में निकले तो सूती तौलिया हो उसे मुड़ से बांध करके पूरा पैक हो करके घर से निकले और ठंडी बोतल का पानी लें। हाँ दीदी, उसका इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा अधिकतर धूप में बच्चों को ना निकलने दीदी।
0: बिल्कुल,
1: कोई बच्चे निकलेंगे दीदी तो उसमें क्या है कि वो बीमार पड़ेंगे और अपन भी निकलेंगे तो अपनों को भी
0: नुकसान
1: लगने की चांसेस है।
0: जी बिल्कुल, ये मौसम बिल्कुल बाहर निकलने की

0: इजाजत नहीं देता, और बच्चों को तो खास करके, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं।
1: हाँ दीदी।
0: तो उनकी सुरक्षा हमें ही करना है और खान पान पे भी बहुत ध्यान देना है। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज अगर आपके पास हो बंजारन पिक्चर का
0: जी, गीत के बोल बताइए।
1: तेरी मेरी मेहरबानियाँ हैं, तू नहीं, तू नहीं।

0: नमस्कार, हेलो झांसी में आपका स्वागत है।
1: हेलो झांसी
0: जी, बिल्कुल हेलो झांसी में आपका फोन लगा। हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: रवि प्रकाश बिजौली से बोल रहा हूँ।
0: बताइए क्या करते हैं रवि प्रकाश जी?
1: मेरा साइकिल रिपेयरिंग का काम है और नियमित का सोता हूँ मैं, और आपके केंद्र के सभी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ मैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के कि हमारे नियमित श्रोता से आज हमारी बात हो रही है।

0: जी
1: तो इस गर्मी की वजह से आपके बिजनेस पे कुछ फर्क पड़ा क्या?
0: हाँ, बिजनेस का फर्क तो पड़ता ही है, सीजन वाइज सीजन तो होते ही सभी काम। अब एक महीना सवा महीना और अपना करना है, तरीके से तपस्या से थोड़ी ठंडक मिलेगी ऊपर वाले की तरफ से। और बड़े दुख की बात है कि मेरा पिछले हफ्ते में भी कोई कॉल रिसीव नहीं हुआ, बराबर घंटी जा रही थी, नहीं दिया गया मेरा ध्यान, तो इस वजह से मेरे को बड़ा दुख हुआ।
1: नहीं नहीं, आप दुख मत कीजिए, क्या होता है हमारे सभी श्रोता बराबर फोन करते हैं, तो कई बार कुछ फोन कनेक्ट हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं।
0: जी हाँ, दो महीने के बराबर डिफरेंस में अपने फोन लगा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों का वो आदेश रहता है कि श्रोताओं को भी टाइम मिले उसमें और मौका मिले कॉल लगाने।
1: देखिए, आज आपका फोन भी लग गया, आपसे बात भी हो गई।
0: जी हाँ,
1: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मेरे को सुनना है मुकेश का गाना है।
1: बहुत अच्छी फरमाइश आपकी, थोड़ा गा के सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: हम छोड़ चल है महफिल को।

0: हेलो झांसी में आपका स्वागत है।
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम शशिभूषण कुमार, रहनमाल उड़ीसा से बोल रहा हूँ।
0: उड़ीसा से?
1: जी मैम।
0: बताइए वहाँ पे मौसम कैसा है?
1: मौसम तो बहुत तेज धूप चल रहा है मैडम।
0: अच्छा, वहाँ पे भी गर्मी इतनी ही है?
1: जी मैम।
0: या शायद कहीं यहाँ से ज्यादा ही होगी ना?
1: झांसी में ज्यादा ही होगा मैम।
0: जी जी जी, तो बताइए अपने उड़ीसा के बारे में कुछ नया, हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
1: उड़ीसा में तो अभी गर्मी ज्यादा चल रही है, तो उड़ीसा में ज्यादा पर्व परमाणु ज्यादा होता है। जैसे हम जैसे कि जगन्नाथ पुरी धाम होता है, और रिसेंटली चला गया वो हरिशंकर यात्रा चला गया, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ का।
0: तो काफी अच्छी चहल पहल हो जाती होगी उस टाइम।
1: जी मैम, और वहाँ का देखने की जगह भी बहुत बहुत खूबसूरत जगह भी है।
0: जी जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: तेरा मेरा साथ रहेगा वो टाइटल सॉन्ग है, जो हाथों में लकीरों में लिखा है वो गाना। और नाम लेना चाहता हूँ मैं।
0: बताइए।
1: ये मधुकेश नारायण कौर, कलिकेश नारायण कौर, सुजाता किशोरी कौर, प्रीति और शिव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सत्यवंत शत्रुघ्न।
0: अपने सभी परिवारजनों और दोस्तों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो झांसी
0: जी, बिल्कुल हेलो झांसी में आपका फोन लगा है। हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार जी,
1: मैं उत्तराखंड से अरशद बोल रहा हूँ।
0: अरशद, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: अपने बारे में कुछ बताइए।
1: खेती बाड़ी करते हैं मैम।
0: तो उत्तराखंड में इस वक्त किस चीज की खेती ज्यादा चल रही है?
1: धान लगा रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: गन्ना है मैम, गन्ने को भी पानी लग रहा है।
0: तो व्यस्तता बराबर है। मौसम कैसा है वहाँ पे अभी?
1: मौसम मैम दोपहर के टाइम बहुत गर्मी है। वैसे तो जंगल में आ जाते हैं तो पानी ज्यादा लग रहे हैं, खेती को तो थोड़ा ठंडी हवा चलती है, वैसे तो बहुत गर्म है।
0: अच्छा
1: जी मैम,
0: चलिए बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है दिलवाले और गीत के बोल है मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
0: आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी में आपका स्वागत है। कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
2: राजपाल जी जाटव।
0: राजपाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: बसावा से कर रहे हैं मैम। हाँ
0: बताइए अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को।
2: बस मैम बढ़िया है, बैठे हैं छायरे में।
0: बस तो जरूरी है इस वक्त छायरे में ही बैठना है, धूप में नहीं निकलना है। बिल्कुल छायरे में बैठिए, धूप में बिल्कुल मत निकलिए। क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल?
2: आजकल बस कुछ नहीं, बढ़िया बैठे थे हैं, बढ़िया मूंगफली में पानी वानी बराते हैं रात के।
0: बस तो अच्छा है, मतलब सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है ना?
2: हाँ खूब बढ़िया चल रहा है मैम।
0: बस तो ऐसी बढ़िया आपकी जिंदगी चलती रहे। बताइए कौन सा बढ़िया सा गीत सुनवाए आज आपको?
2: बिल्कुल गा के बता रहा तुम्हारा ना हाल।
0: हाँ बिल्कुल गा के बताइए।
2: के मौका मिलेंगे तो हम बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम,

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: जी मैं संजय बात कर रहा हूँ, मैं झांसी से हूँ।
0: अच्छा झांसी से, आवाज से तो हमारे बहुत छोटे से श्रोता लग रहे हैं, क्या करते हैं?
1: जी मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ।
0: ओके, तो मतलब आजकल गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं?
1: हाँ जी।
0: तो कैसे सदुपयोग हो रहा है अपनी गर्मी की छुट्टियों का?
1: जी मैं खेल रहा हूँ और अपना होमवर्क कर रहा हूँ।
0: होमवर्क कर रहे हैं और खेल क्या रहे हैं?
1: मैं स्विमिंग जाता हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।

0: मतलब स्विमिंग चैंपियन बनने का इरादा है?
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त गर्मी बहुत तेज है, इसलिए बाहर कम निकलिएगा, घर के अंदर ही रह के खेलिएगा और अपना होमवर्क कीजिएगा
1: जी,
0: है ना। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: जी मैं पठान मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: पठान मूवी का टाइटल सॉन्ग, शब्द बताएंगे?
1: जी मुझे पठान।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे सुनवाते हैं पठान फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी में आपका स्वागत है।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: विनय बोल रहे हैं, मंडली भोपाल एमपी से।
0: क्या करते हैं विनय जी?
1: तो गाड़ी चलाते हैं।
0: अरे वाह, फिर तो आप मतलब लोगों को उनके उचित स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं।
1: जी हाँ,
0: बहुत अच्छा।
1: पहुंचाने
0: का, मंजिल पे पहुंचाने का काम, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है और बहुत एडवेंचर का भी काम है। तो नए नए लोगों से मुलाकात होती होगी, नए नए एक्सपीरियंस मिलते होंगे आपको तो।
1: जी हाँ, हम 50 किलोमीटर के अंदर ही भोपाल शहर रायसेन के अंदर में ही चलते हैं। बाकी जहाँ नहीं गए भी रहते हैं, वहाँ नया भी लोकेशन पे जाना पड़ता है मैडम।
0: नहीं, ये बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत नई नई चीजें देखने को और नए नए लोगों से मिलने का मौका है ये तो। तो भोपाल में अभी मौसम कैसा है?
1: थोड़ा यही गर्मी मैडम बहुत ज्यादा अभी चल रही है इस समय,
0: तो इस गर्मी में गाड़ी चलाना तो और ज्यादा परेशानी का कारण बनता है ना।
1: हाँ, दोपहर में थोड़ा कम ऑर्डर

0: आता है, शाम को ज्यादा आता है, 12 के इधर तक हम चला लेते हैं, 2 से 12।
1: तो मतलब इस गर्मी में बिजनेस पे भी असर पड़ा ही होगा थोड़ा बहुत तो ना। चलिए कोई नहीं, वक्त है, ये भी बदल जाएगा। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
0: मैडम ये गाने का मूवी का नाम नहीं पता, गाने का नाम पता है, चांद जैसे मुख खड़े दिया सितारा।
1: बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश पे आपको सुनाएंगे ये गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
0: मैं कश्मीर सोनामर्ग।
1: कश्मीर से अपना नाम बताइए।
0: लतीफ अहमद रैना।
1: लतीफ जी,
0: हाँ जी,
1: कैसा मौसम है वहाँ पे अभी?
0: अभी तो सुहाना मौसम है, कभी बादल रहता है यहाँ पे, कभी मौसम ठीक रहता है, कभी ऐसा ही गड़बड़ रहता है।
1: तो फिर भी यहाँ से तो बहुत ही बेहतर होगा।
0: हाँ, यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है दिन में भी, शाम में, सुबह भी।
1: चलिए, तो
0: गर्मी तो नहीं है जितना बाहर है ना मैडम, 23-25 इतने तक गर्मी भी है।
1: चलिए, तो बहुत अच्छा मौसम है फिर तो। इस सुहाने मौसम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: तो मैं इसकी आवाज में ये गाना, हंसता है नूरानी चेहरा।

0: आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी में आपका स्वागत है।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं बुंदेला टेलर बात कर रहा हूँ, उदयपुर राजस्थान से।
0: बुंदेला जी।
1: हाँ जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है घणी खम्मा
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बताइए अपने बारे में कुछ।
1: हम टेलरिंग का काम करते हैं, पहले शॉप थी, अभी घर पर काम करते हैं।
0: अच्छा, तो घर से भी काम उतना ही अच्छा चल रहा है।
1: और मैं 50 साल से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी। बहुत अच्छा।
1: और अभी तक जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत बड़ी बात है कि 50 साल से एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी नई पुरानी बहुत सारी यादें हो गई होंगी
1: जी।
0: बताइए किस तरीके के गीत पसंद करते हैं?
1: गीत तो ज्यादातर तो पुराने गीत पसंद है, 1990 तक के पसंद आते हैं
0: जी।
1: उसके बाद वाले थोड़े कम सुनते हैं, आजकल के नौजवान बच्चे बच्चे सुनते हैं।
0: तो आज कौन से गीत की फरमाइश लाए हैं?
1: आज फिल्म है सीता और गीता, उसमें गीत है कल मुझे एक लड़की सपने में मिली थी
0: जी। बिल्कुल, आपकी फरमाइश पे हम सुनवाते हैं सीता और गीता फिल्म का ये गीत।

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं उमेश बात कर रहा हूँ पंचवटी से।
0: जी उमेश जी,
1: और मैं आपका प्रोग्राम विवेक भारती हेलो फरमाइश काफी सुनता हूँ।
0: जी हमारे आकाशवाणी झांसी के कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: मेरा जो है सुबह का टाइमिंग रहता है, सुबह में जब अपने ऑफिस आता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में आपके विविध भारती के जो सुबह आता है 9 बजे से,
0: जी जी जी,
1: भारत की गूंज और एक वो आता है आज के फनकार,
0: जी
1: ये कार्यक्रम सुनता हुआ जाता हूँ और जब तक ये कार्यक्रम खत्म होता है तब तक मैं अपने ऑफिस भी पहुँच जाता हूँ।
0: चलिए
1: तो वहाँ ऐसी युवा
0: चलिए तो मतलब रेडियो आपका हम सफर है।
1: मेरी ख्वाहिश है गाने की, महेंद्र कपूर साहब ने गाना है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, थोड़ी सी एक झलक आप अमीर सैनी साहब की डाल दीजिएगा।
0: चलिए तो याद को ताज़ा कीजिए, और आवाज़ आपकी काफी अच्छी है तो क्यों ना आप उन्हीं के अंदाज में अपनी फरमाइश हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं।
1: उनके अंदाज में?
0: जी बिल्कुल।
1: उनके अंदाज में तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, तो भाई और बहनों लीजिए आज प्रस्तुत है आपके सामने हेलो फरमाइश, जिसको हम पेश कर रहे हैं झांसी के आकाशवाणी से, और इसमें हम आपको सुनाएंगे आपके मन पसंदीदा गीत जिसको हम लेकर आएंगे आपके खास दोस्तों की फरमाइश पर। तो बताइए आज की आपकी क्या फरमाइश है?
0: बहुत अच्छा अंदाज है आपका, हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। अपना नाम बताइए।
1: मैं अशोक श्रीवास्तव।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं नर्सिंग और कोरिया है, वहाँ से बोल रहा हूँ।
0: हमारे केंद्र के कौन से कार्यक्रम सुनते हैं
1: आपके? हम लगभग सभी कार्यक्रम सुनते हैं
0: जी।
1: जैसे माटी धरती की है और बुंदेली लोकगीत है, अपना ये हेलो झांसी तो कर लोकप्रिय है।
0: चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: हम तुम चोरी से बने एक डोरी से।

0: आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें फिर चाहे जितनी। जी हाँ श्रोताओं, आज के हेलो झांसी का सफर हुआ पूरा। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। आज जिन साथियों की फरमाइश पूरी हो गई है उनसे अनुरोध है कि 2 महीने बाद ही कॉल करें, जिससे हमारे और भी श्रोता हमसे जुड़ सकें, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकें। जुड़ने के लिए हमें कॉल कीजिए, हमारा फोन नंबर है 0510-232-0068। इस नंबर पर प्रत्येक रविवार और बुधवार को दिन में 2 बजे से 3 बजे तक आप कॉल करके अपनी फरमाइशी गीतों को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका प्रसारण होगा प्रत्येक सोमवार और गुरुवार रात 9:30 से। साथ ही आप हमारी फेसबुक आईडी के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी दोस्त प्रीति सक्सेना वादा करती है कि फिर मिलेंगे नई बातों नए गीतों के साथ, इसी जगह इसी समय इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेलो झांसी।
1: हेलो।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर व प्रस्तुति सहयोग प्रीति सक्सेना का था और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है।

एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और ये वक्त है प्रोग्राम सुगम संगीत का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। तो लीजिए समात फरमाइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल आवाज में सुदर्शन फकीर का ये कलाम।

शामिल अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन फकीर का कलाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। आइए एक बार फिर सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के ही आवाजों में निदा फाजली का कलाम।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नए गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: श्रोताओं, एफएम 103 पर आकाशवाणी के झांसी केंद्र से इस वक्त आप समाप्त फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुगम संगीत। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह। आइए सुनते हैं प्रोग्राम की अगली गजल चित्रा सिंह की आवाज में।
1: इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शहरत।

आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल, और ये प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चित्रा सिंह की आवाज में है।

सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं खत्म होता है। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज के फनकार थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हिंदी में समाचार तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया इंतजार करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया